0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: FM 100 traffic update.
1: मैं हूं फारूक इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक इस वक्त वो ट्रैफिक जो जा रहा है और दुख चौरंगी की जानिब और कॉजवे के रास्ते जो महमूदाबाद सिग्नल से जो ट्रैफिक जा रहा है कॉजवे और वहां से दुख चौरंगी की जानिब जा रहा है, उस पर ट्रैफिक का ऐसा दबाव देखा जा रहा है। गाड़ियां स्लो मूव कर रही हैं, ऑफिस टाइमिंग की वजह से सूरत हाल पेश आ रही है। वो तमाम लोग जिस रास्ते से सफर करना चाहते हैं बलोच कॉलोनी से महमूदाबाद सिग्नल और वहां से कॉल फौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जानब जाना चाहते हैं, वो अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का. एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें. मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें. तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
5: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया. साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं. इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द फिफ्थ डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन. हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स. अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए. रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
7: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
9: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट. स्टेप अप, बिल्ड अ साइबर सेफ लाइफ एंड अनलॉक प्रीमियर करियर्स इन साइबर सिक्योरिटी एट द फिफ्थ डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
10: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: एंड शौकत खानम, कराची की तकदीर.
3: एंड सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा.
11: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरजीह देते हैं. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کی زمان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
14: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
15: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
16: ہماری ذمہ داری ہے.
17: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
18: FM 247 365.

0: अरे क्या हुआ लाल पीक?
1: अरे कुछ नहीं मिराल, बोर हो रहा हूँ, कुछ करने को ही नहीं है मेरे पास।
0: अरे लाल पीक, ये तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बोर हो रहे हो? अपने आसपास देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है। बादल देखो, तारे देखो, फूल देखो, बारिश देखो।

0: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा. आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज आप लोग मुझे अपने पर्ल्स ऑफ विजडम देंगे इंशाल्लाह और आप लोगों के पैगामात हैं. आप लोग मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोग के सबसे फेवरेट कोटेशन क्या है और हमारे पास सबसे अभी एनजी का सबसे पहले मैसेज आया था वो कहते हैं दिस हार्ड सीजन इज अ चैप्टर नॉट योर होल स्टोरी. The light will find its way back to you. It is so beautiful. कि जो मुश्किल वक्त है ये एक चैप्टर है आपकी कहानी का और रोशनी फिर से घूमकर आपकी तरफ वापस आएगी. क्या बात है एनजीक साहब, सुबह सुबह भाई क्या बात है. और क्या कह रहे हैं एनजीक अपने गूगल बैन की बड़ी शो मार रहे हैं. इट लुक्स गुड ऑन यू एंड इट्स वेरी ट्रेंडी. सो या अच्छे लग रहे हैं आप. आई होप कि इसमें डिफरेंट आई थिंक इसमें मैचिंग बैंड्स होने चाहिए ना, मतलब यू नो जस्ट डिफरेंट कलर्स तो फिर तो बड़ा अच्छी चीज है. आई शुड ऑल्सो गेट इट. ओके और इसके अलावा हमारे पास आबिद अमीर है. उन्होंने मैसेज किया है कि जिसने उनकी सोच बदल दी. मौलाना रूमी फरमाते हैं अगर मेरा इल्म मुझे मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे हजार गुना बेहतर है. कितनी खूबसूरत बात है. मोहब्बत नहीं करना आती है लोगों को, पैसा कमाना आता है, बहुत बड़ी पोजीशन लेनी आती है, लेकिन क्या कहते हैं काबिल इल्म हासिल करके काबिल पीएचडी बन जाते हैं लेकिन जो है ना वो मोहब्बत करनी नहीं आती लोगों को कि लोगों से कैसे मोहब्बत करनी है, उनका कैसे ख्याल करना है. तो ये नहीं सीखा आई थिंक लोग सिखाते, ये सीखा जा नहीं सकता. नजीर खोसो कह रहे हैं कि मेरा पसंदीदा कॉल ये है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है. जिंदगी में जल्दी का कोई फायदा नहीं, वक्त सब कुछ खुद ठीक कर देता है. जब इंसान टूटता है तभी वो मजबूत बनता है. ये कॉल मुझे हर मुश्किल में हिम्मत देता है. ये सिखाता है कि रुकना नहीं बस चलते रहना है. बस यकीन रखो कि अल्लाह बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन देगा. ये बात ही मुझे बहुत प्यारी लगी है इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हम जल्दबाजी में जो है ना वो खो देते हैं और जल्दबाज इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता. ये भी सुना है और हम लोग कराची या सिटी लाइफ हमें आपको सिर्फ ये सिखाती है कि बहुत जल्दी प्रमोशन मिलनी चाहिए, बहुत जल्दी ये चीज होनी चाहिए, बहुत जल्दी वेट लॉस होना चाहिए वगैरह वगैरह. खैर वेट लॉस से मुझे ये आ गया क्या कहते हैं रेली और यार बड़ा अच्छा आई लव दिस यार बैंड. यस अवेलेबल डिफरेंट कलर्स वेरी गुड. ऑफकोर्स यू कैन वेयर अ मैचिंग बैंड टू वर्क. तो यू इज लुकिंग रियली गुड ऑन यू एनजीक. आई लव दिस आइडिया. खैर हम बात करें अभी हेल्थ की कि आप यू नो अपने हेल्थ को कैसे बेटर बना सकते हैं और हेल्थ को रिलेटेड मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है जो मैं बहुत दिनों से चाह रही हूं सबको बताऊं. तो चलते हैं हेल्थ अपडेट की तरफ.
1: हेल्थ अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100 पाकिस्तान.
0: ओके जी हेल्थ अपडेट जो है हमारी वो ये है कि आपने रात को जो लोग देर से खाना खाते हैं और देर से खाना खा के फिर सो जाते हैं तो ये आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ाता है और इट्स लाइक वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ. अगर आप मरना चाहते हैं, आपको दुनिया से नफरत हो गई है, जिंदगी से आप बेजार हो गए, तो आप सिर्फ ये करें कि खाना खाएं और खा के ना वहीं सो जाएं, वहीं लेट जाएं और उसके बाद बस. अक्सर मैंने ये नहीं कि बहुत लोगों की ये रूटीन है और मैं अक्सर देखती हूँ कि ये जो एज के लोग हैं ज्यादा लाइक दे इन द वेल इन टू अब तो एज इज जस्ट अ नंबर ही हो गई है लेकिन खैर जो दादियां नानियां हैं जो इतनी एज तो नहीं है लेकिन वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगती हैं तो इसलिए अब जो है ना हम आपको बताएं कि उसका ये भी राज है कि वो वहीं खाती हैं तख्त पे बैठ के जो भी उनका खाने की जगह और वहीं बगैर वॉक किए सो जाती है. तो जब आप रात को देर से खाते हैं उसमें क्या होता है कि स्लो कैलोरी बर्न होता है और उसके बाद फैट स्टोर होता है. आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो स्लो हो जाता है. हार्मोन कंट्रोल आपका जो है ना वो बहुत पुअर होता है और इसके बाद है ना आप जो है ना क्या कहते हैं एसिड रिफ्लक्स हो सकता है. आपकी तबीयत खराब हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है. आपको पता है कि आपकी जो बॉडी है उसको रात को आपका खाना डाइजेस्ट करने के लिए रिपेयर के लिए कम से कम 6-7-8 घंटे की नींद चाहिए और उसको खाने में और सोने में थोड़ा गैप चाहिए कि आपका आखिरी जो मील है आखिरी जो खाना है वो आपके सोने से कम 2-3 घंटे पहले हो ताकि आपकी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट कर सके. नहीं हम तो अपनी बॉडी के ही दुश्मन हैं. हम तो खा के उस बॉडी को इतना बड़ा टास्क दे देते हैं कि हम तो सो रहे हैं तुम अपना काम करो. ऐसा नहीं होता. यू नीड टू गिव योर बॉडी अ लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट सो दैट यू फील फ्रेश इन द मॉर्निंग. आपकी नींद जो है ना वो افیکٹ ہوتی ہے اگر آپ رات کو جو ہے نا بہت دیر سے کھانا کھاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ شوگری اور ہائی کارب, اور اکثر لوگ یہی کھا رہے ہوتے ہیں رات کے وقت, کیونکہ اگر آپ رات کو دیر تک جاگتے ہیں تو آپ کو ایسے کھانے کا دل چاہتا ہے, مطلب پیزا اور برگر, سینڈوچز, یو نو, فاسٹ فوڈ یا میٹھا, اور وہ آپ پھر ہے نا فون آرڈر کرتے ہیں, فوراً آ جاتا ہے کھانا, اور یہ عادتیں خراب کی ہیں لوگوں نے. سو دیٹ از ویری ویری بیڈ فار یور ہیلتھ. اور ویکینڈس میں چلو لوگ کرتے ہیں بنج ایٹنگ, میں بھی کرتی ہوں ویکینڈ میں, کہا چھوڑا یار ویکینڈ پہ آئی ہیو, مگر اگین اٹ واز ناٹ ہیلدی ایٹ آل. آئی ہیڈ بنج ایٹنگ, آئی ہیڈ لائک یار رات کے 2 بجے کھا رہے ہیں, لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ برا ہے. اور اگر آپ ویٹ لاس از یور ٹارگیٹ, دس از ناٹ فار یو. بہت اور جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے, وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مطلب اوبیسٹی ہے. آپ اگر موٹاپا اگر جن لوگوں کا کم کرنا ہے, ان کو آپ کو حیرت ہو رہی ہے موٹاپا کیوں نہیں کم ہو رہا, بیسٹ یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی کھانا کھائیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کی صحت کو. تو یہ تھا میرا پرل آف وزڈم. اور کچھ لوگ آپ کو پتا ہے کچھ کلچرز ایسے ہیں جو لوگ 5 بجے ڈنر کر لیتے ہیں, 5 بجے 7, 5 سے 7 ان کے وہ ہوتا ہے کہ نہیں 5 بجے ڈنر ٹائم ہے. اور لوگ کہتے ہیں 7-8 بجے کون ڈنر کرتا ہے, ہمارے یہاں لوگ 8 بجے کے ڈنر پہ بھی 10 بجے پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے. اور شادیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بس کہ اب جو ہے نا مطلب 12 میں تو دعائیں مانگ دیا خدا کے لیے 12 بج گئے اب تو کھانا دے دو. ہم کہ میں کیا باتیں کروں, ہماری اپنی شادیوں میں کھانا لیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اینی ویز, تو خیر یہ ہماری ہیلتھ اپڈیٹ تھی. اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا سین ہے, آپ کوئی ایسی اقوال زرین, کوئی وزڈم ریلیٹڈ بات, کوئی پروورب مجھے بڑے اچھے لگتے تھے. پروورب کو بتائیں اردو میں کیا کہتے ہیں, کہاوت, ضرب المثل, محاورہ, تو آئی تھنک محاورہ کہتا ہے. تو کچھ اگر آپ کے ذہن میں ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت صحیح ہے, اس کو شیئر کرنا چاہیے, تو ہم سے شیئر کریں, ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ. اور میں تو جا رہی ہوں تھوڑا ڈانس کرنے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ صبح صبح ایکسرسائز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور لیٹس ڈانس بیبی اینڈ لیٹس انجوائے دس سانگ.

0: FM 100 traffic update.
1: ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फारूक इज़हार। शहर कराची की सड़कों और शाहराओं पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। मिलने वाली इत्तला के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वाला ट्रैफिक जो सपूरा चौरंगी से दीपा चौरंगी के जानी आ रहा है, दरमियानी रास्ते पर कई माह से तामीरी काम जारी होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी उस ट्रैक पर मुतासर हो रही है। लिहाजा वो तमाम लोग जो यूनिवर्सिटी रोड का इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिलों की जानी सफर करना चाहते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह रहे। इसके साथ साथ डिफेंस मोड़ की जानब जाने वाला वो ट्रैफिक जो अक्सर कॉलोनी सिग्नल से डिफेंस मोड़ और वहां से पंजाब चौरंगी की जानब जा रहा है उस पर भी इस पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। लिहाजा अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
2: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक्स से ही कम नहीं।
0: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
1: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
0: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
1: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
2: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
5: शौकत खानम कराची की तकनीक.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
8: किसने कहा था पैसे बचा?
9: फिनिक्स

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
4: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365 100 FM.
7: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप है हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और हम भी आपके साथ साथ हैं. और आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें कि HI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर. और अदनान अहमद का भी मैसेज आया हुआ है. हम आज बात कर रहे हैं अकवाल ज़री की और अकवाल ज़री हम शामिल करेंगे अदनान अहमद के. अदनान अहमद कह रहे हैं मेरा पसंदीदा कौल मौला अली का, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना. ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये हमें नाकामी से डरना नहीं सिखाती. जिंदगी में हम सब कभी ना कभी रास्ता भटकते हैं, गलत फैसले करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन असल हार तब होती है जब हम कोशिश ही करना छोड़ते हैं. तो अगर आज आपका दिन मुश्किल लग रहा है, कोई काम नहीं बन रहा, तो बस ये याद रखें कि चलते रहना ही कामयाबी है. फटकना भी सफर का हिस्सा है. घर बैठकर मंजिल का इंतजार करने से बेहतर है कि निकलें, गिरें, संभलें और आगे बढ़ें. मतलब ये कि हर नाकामी के बाद भी कुछ ना कुछ बच जाता है. इसी कुछ पर मेहनत करें तो वही एक दिन सब कुछ बन जाता है. जिंदगी में सब गिरते हैं, कोई इम्तिहान में, कोई कारोबार में, कोई रिश्तों में. फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उठकर दोबारा चल पड़ता है और कहीं वहीं बैठकर शिकायत करने लगता है. कामयाब लोग वो नहीं जिनसे गलती नहीं होती, कामयाब वो हैं जो हर गलती के बाद एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं. तो आज अगर आप थके हुए हैं, दिल टूटा हुआ है, तो सिर्फ इतना याद रखें, सांस चल रही है ना, तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई और उठे और चल पड़े. वाह वाह अदनान अहमद, वैसे आपने कोई कमाल मैसेज किया, तालियां बजानी चाहिए आपके लिए. मेरे लिए भी तालियां बजा दें कि मैंने पढ़ा भी है यार, मतलब मेहनत करके. और नसीर अहमद कह रहे हैं कि मौजू बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे कॉल सुनने को मिलते हैं, शो नहीं सुनने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने वैसे ही शिरकत के लिए हमारे उसमें. एंड थैंक यू अदनान अहमद, बहुत ही प्यारा आपने मैसेज किया. और मौलानी का इस पे मुझे एक और भी कॉल याद आ रहा है. वो कहते हैं कि एक दिन आपके हक में होता है, एक दिन आपके खिलाफ होता है. जिस दिन आपके हक में है आप शुक्र करें, जिस दिन आपके खिलाफ है सब्र करें. और इसके अलावा रिजवान आरफी कह रहे हैं कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी. मौलाना रूमी, आज मौलाना रूमी साहब के बड़े हमारे पास कॉल आ रहे हैं. अच्छा कहते हैं बगैर इतनी छोटी छोटी बातों में, फारसी है ये, कितनी खूबसूरत बात है कि जिस जिंदगी में इबादत ही नहीं है, मतलब वो क्या जिंदगी है. सो ब्यूटिफुल, ऐसा ही मौलाना रूमी का कोई इतना दर्जात नहीं है. राइट, तो खैर आपके मैसेजेस का हम इंतजार रहेगा. हमें मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या एट आज समिया इंस्टाग्राम पे. आज हम जानना चाह रहे हैं कि आपका फेवरेट कॉल कौन सा है, फेवरेट कॉल, कहावत, हिकायत, सरबुल मिसल, महावरा वगैरह वगैरह, जिस जो आपको बहुत पसंद है, जो आप बार बार कहते हैं, सुनते हैं. तकिया कलाम भी एक चीज होती है, तकिया कलाम है ना, तकिया कलाम से तकिया याद आ जाता है. खैर एनीवेज, तो अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये ट्रैक, आइए सुनते हैं.

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL
1: and शौकत खानम कराची की तकलीफ
2: and सरसब्ज नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
4: FM247365
5: वेलकम बैक जी, आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं हूं आपकी दोस्त आशी समीहा और आज हम बात कर रहे हैं कि आपका फेवरेट कॉल कोट और कोई जरबल मैसेज जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपको लगता है कि आपको दूसरों से शेयर करना चाहिए, तो हमें मैसेज करें आशी समीहा के फेसबुक पेज पे या आशी समीहा इंस्टाग्राम पे और हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का और अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये ट्रैक, आइए सुनते हैं।

0: RJ Samina.
1: जी यहाँ पे हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और अब मैं आपसे लूंगी इजाजत। आज हमने कॉल अकवाल की बात की और आप लोगों के पैगामात भी आए, और जाते जाते मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं हजरत अली का ही ये कॉल आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। हजरत अली का कॉल है कि जब तुम्हें थोड़ी बहुत नेमतें हासिल हों तो नाशुक्री से उन्हें अपने तक पहुंचने से पहले ना भगा दो, कि छोटी नेमत का भी शुक्र करना चाहिए, बड़ी नेमत का भी शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला शुक्र गुजार लोगों को पसंद करता है, और इसीलिए मैं बार बार अपने शो के एंड में यही बोलती हूँ, जैसे मेरा तकिया का नाम है बन गया है, कि दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी शुक्रगुजारी है, कि जब आप शुक्रगुजार इंसान हैं और आप हर चीज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, छोटी नेमत पे भी बड़ी नेमत पर, उठते बैठते भी, तो यही आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दुनिया एक टेस्ट बनाई है, और उस टेस्ट के अंदर वही पास होगा अच्छे नंबरों से जो ज्यादा से ज्यादा शुक्रगुजार हो। शिकवे तो बहुत लोग करते हैं, और ये जिंदगी है, और यहाँ पे कमियां भी हैं, आजमाइशें भी हैं, लेकिन यकीन करें 90% लाइफ बहुत अच्छी है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारा नाम शुक्रगुजार लोगों की फहरिस्त में शामिल करे। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच जिन्होंने इतना अपना कीमती वक्त निकाल के बहुत प्यारे प्यारे मुझे क्या कहते हैं मैसेजेस किए, कॉल किए। आप लोग हैं तो मेरा शो जो है वो रंगीन है, और आज मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि नसीन पटेल जी आज आई हैं मेरे साथ, और मेरे लिए बहुत अच्छा बहुत खास नाश्ता भी लाई और बहुत सारी चीजें लाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी, और मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, आई एम लीविंग यू विद दिस ट्रैक।
2: किड़ किड़ कैन किणा गण कैन किणा गण कि ग्रहा किड़ किड़ किड़ किड़।

0: 10:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko dein azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apne kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: dedication for maximum music.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
2: Only music, no RJ talk.
1: This is FM 100.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365.
3: FM 100.
4: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो चुका है तो आपको बताएंगे तरीका कार कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो जी इसके लिए आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, की अचाय लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। तो इस तरीका कार के जरिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कॉमेंट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी स्टेटस हो चुका है अपडेट। तो भाई आज हम आपसे ये जानेंगे कि आपका मूड खराब हो तो आपको क्या चीज इंस्टेंटली बेटर फील करवाती है। यानी कि अगर आपका मूड जो है वो बड़ा खराब है, आपका मूड अच्छा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो आपको बहुत बेटर फील करा देती है। कभी किसी की बात, कभी किसी का साथ, कभी कोई आपकी पसंद की चीज, कभी कभी आपका मूड बहुत खराब होता है लेकिन आप लंच करते हैं ना तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। कभी कभार आपको कोई अच्छी कंपनी मिलती है जिसके साथ जो है वो आपका मूड जितना भी खराब हो वो फौरन से ठीक हो जाता है। तो ऐसी क्या चीज है जो आपके मूड को इंस्टेंटली कर देती है बहुत अच्छा? तो इसका जवाब हमें जरूर दीजिएगा कि वो क्या चीज है जो आपके मूड को कर देती है फौरन से बेहतर। तो वो क्या चीज है आप हमें बताएं। जब तक हम चलते हैं कदर ट्रैक की जानेब और देते हैं आपको सोचने का मौका। सोचें और हमें जरूर बताएं।

0: ये दिल।
1: थोड़ा सा जज्बाती है ये दिल। जी हाँ, तो इस ट्रैक को आप लोग एंजॉय कर रहे थे। साथ ही साथ भाई ये भी बात हो रही है कि जब आपका मूड ऑफ होता है या आपका मूड खराब होता है तो ऐसी क्या चीज है जो आपके मूड को फौरन से अच्छा कर देती है। और हर किसी के पास कोई ना सीक्रेट ऐसी चीज मौजूद होती है जो आपके मूड को अचानक से बेहतर कर देती है। कभी कभी एक कप चाय का भी आपके मूड को जो है ना वो बहुत बेहतर कर देता है, आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत हद तक कम कर देता है। बिकॉज बहुत सारा काम है, बहुत सारा स्ट्रेस सर पर है, और उसी के साथ अगर आपको एक बेहतरीन गर्मा गर्म चाय का कप मिल जाए ना तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आपके मसाइल जो है ना वो उस चाय के कप से हल हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जो आपके मूड को ना अचानक से चेंज कर देती हैं। आपकी पसंद का म्यूजिक, जेन्युइनली अगर आपकी पसंद का म्यूजिक चल रहा है तो आप उसको सुनकर आपका मूड अच्छा हो जाता है। कभी कभी आप ना उस ट्रैक से बहुत रिलेट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे करंट सिचुएशन आपके साथ चल रही होती है उससे वैसे ही उस ट्रैक में भी होता है, तो ये सुनकर भी आपका मूड जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। कभी कभी किसी की स्माइल आपका मूड को बहुत अच्छा कर देती है, कभी किसी बच्चे को खेलते देखकर आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, कभी आपको पता है बिल्ली की कुछ शरारतें या हरकतें देखकर आपको हंसी आ जाती है, क्योंकि बिल्ली की इटसेल्फ नेचर बड़ी शरारती होती है और उसकी वो मजे की गेम्स या कोई ना कोई चीज देखकर भी आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मूड को अच्छा कर देती हैं। आज हम आपसे भी ये जान रहे हैं कि आपका मूड अगर खराब हो तो उसे अच्छा करने के लिए आप क्या सीक्रेट कोड अपनाते हैं जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है। और फिर मूड का अच्छा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हर वक्त गुस्से में रहेंगे ना तो भाई फिर तो मजा ही खराब हो गया, क्योंकि गुस्से में रहने से ना तो कोई आपसे बात करेगा ना आपको भी अपनी जिंदगी का मजा आएगा। क्योंकि जब आपका भी मूड ऑफ रहेगा तो हर कोई एहतियात करेगा कि भाई बात करें या ना करें या फिर छोड़ो, तो इसलिए मूड का अच्छा रहना जरूरी है। लेकिन मूड किस तरह लोग अच्छा रखते हैं इसी के हवाले से हम लोग आप लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिकॉज वी आर टॉकिंग टू यू। गुस्सा इंसान को वक्ती तौर पर ताकतवर बना देता है मगर आखिर में इसे कमजोर कर देता है, तो ये बात भी ठीक है। वक्ती तौर पर आप बड़े ताकतवर होते हैं, गुस्से में होते हैं, सब लोग आपसे खौफ ज्यादा हो रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं, और वाकई में उस वक्त आप बड़े ताकतवर हो जाते हैं जब आप अपने गुस्से पे होते हैं, यानी कि उस वक्त आप अपने उरूज पर होते हैं। लेकिन आखिर में इस इंसान को कमजोर कर देता है, क्योंकि लोग खौफ दहशत या डर के मारे ना आपसे बात नहीं करते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग ये रियलाइज करना शुरू कर देते हैं कि यार इससे तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो हर वक्त ही गुस्से में रहता है, कोई भी बात करेंगे छोटी सी बात भी होगी तो वो उस बात को इतना बड़ा कर देगा कि बात करें ना करें। तो इस वजह से अक्सर औकात लोग बात करना इसीलिए छोड़ देते हैं कि भाई ये तो गुस्से का बड़ा तेज है, बात कुछ भी होगी इसने तो चीखना चलाना जो है वो शुरू कर देना है, और इस वक्त मूड नहीं है कि मूड को मजीद खराब किया जाए। तो गुस्सा तो भाई ऐसा ही होता है कि आपको कुछ वक्त के लिए बड़ा ताकतवर बना देता है मगर आखिर में इसे कमजोर कर देता है, यानी कि इंसान को काफी कमजोर कर देता है। तो इसलिए जी इससे तो अपनी जिंदगी से दूर रखें। लेकिन मूड को अच्छा करने के लिए आप क्या करते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और आते हैं वापस ट्रैक के साथ और जानते हैं कि आपका मूड अच्छा होता कैसे है।
2: मिशन में परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

ओके जी, सो वी आर टॉकिंग एंड वी आर एंजॉइंग, और हम आपके अच्छे मूड के बारे में पूछ रहे हैं जी, आपका मूड जो है वो अच्छा कैसे होता है। अगर आपका मूड होता है बहुत खराब तो उसे अच्छा करने के लिए आप क्या करते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास मैसेजेस भी आ चुके हैं। रशीद खान कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बेहतरीन हूं जी। कहते हैं मैं भी अच्छा हूं, ऑफिस से सुन रहे हैं। कहते हैं दिन भी अच्छा गुजर रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। इनके लंच में तोरी है, मीन्स तुरैया, जबरदस्त हो गया जी। कहते हैं आपके लंच में क्या है? मेरे लंच में दाल चावल है, और मोस्टली मेरे लंच में ना जो है वो वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दाल चावल ही होते हैं, तो आज मेरे लंच में ये है। कहते हैं माई अच्छा विद माई नेम ये गाना लगा दें। ओके जी, डन हो गया जी। कहते हैं जब भी मेरा मूड खराब होता है तो मैं अपनी पसंद का ट्रैक सुनकर मूड सही हो जाता है। रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। ओके जी, तो भाई रशीद खान तो अपने मूड को अच्छा कर लेते हैं अपनी पसंद का ट्रैक सुनकर, और इसी के साथ साथ उन्होंने हमसे कहा है कि जी ये ट्रैक भी लगा दें मेरे नाम के साथ। ओके, तो इट मींस कि रशीद खान कहीं आपका मूड अभी खराब है और आप इसे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ऐसे ही जनरली इस ट्रैक को सुनना चाह रहे हैं, तो ये क्या बात है आप हमें जरूर बताएं। चलो जी भाई, रशीद खान का नाम लेकर उनकी पसंद के ट्रैक को शामिल करते हैं और फिर आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

के जीत और रशीद खान के पसंद के ट्रैक को हमने शामिल कर लिया है, और साथ ही साथ हमने उनसे ये भी जान लिया कि भाई आपका मूड खराब है या ऐसी आपका सुनने का दिल चाह रहा है, क्योंकि आज हम बात ये कर रहे हैं कि जब आपका मूड ऑफ होता है, मूड खराब होता है, तो इंस्टेंटली आप ऐसी क्या चीज करते हैं जिससे आपका मूड जो है वो फौरन से पेशतर अच्छा हो जाता है। आज यही मौजूद गुफ्तगू है हमारा, तो आप हमें जरूर बताएं कि ऐसी क्या चीज है जो आपके मूड को कर देती है फौरन से अच्छा। अच्छा ही नहीं, बेहतरीन, शानदार, कुछ भी आपके मूड। बस अक्सर औकात हम सोके उठते हैं ना, तो हमारा मूड बस खराब होता है। क्यों होता है ये हमें खुद भी नहीं पता होता, लेकिन हो जाता है, और काफी टाइम बाद हम खुद भी नहीं समझ पाते, बल्कि समटाइम्स तो पूरा दिन ही गुजर जाता है और वो मसला हमें समझ नहीं आता कि किस वजह से जो है ना वो हमारा मूड खराब हुआ था। क्या ये भी हुआ कभी आपके साथ या नहीं? ऐसा नहीं होता, किसी न किसी रीजन के तहत आपका मूड खराब होता है, बिकॉज भाई सबकी अपनी अपनी बात है, सबका अपना अपना मिजाज है, सबका अपना अपना अंदाज है। किसी का अंदाज लाजवाब है, किसी का अंदाज बेमिसाल है। तो जिसका भी जो भी अंदाज है, सवाले से हम बात कर रहे हैं, और आपके अच्छे से मूड को अच्छा करने के लिए आप क्या करते हैं, इस पर भी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ अभी हम ट्रैक्स तो शामिल कर रहे हैं, लेकिन ना बहुत सारे जो हैं वो हमारे ट्रैक्स बहुत स्लो स्लो शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सबका मूड जो है वो थोड़ा सा डल हो गया होगा। तो चलें जी, आपके मूड को मजीद एनर्जाइज करते हैं एक और जबरदस्त से ट्रैक के साथ, जो आजकल लोगों का बड़ा फेवरेट चल रहा है, जिसे हमने कल भी शामिल किया था, बल्कि कल हमने प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज ही इस ट्रैक के साथ किया था। तो वही सुनाते हैं और आपके मूड को अच्छा करते हैं, थोड़ा मजीद एनर्जाइज करते हैं, और फिर आपसे मजीद करते हैं गुफ्तगू इस ट्रैक के बाद।

0: के जी सो मैंने कहा कि एनर्जी लेवल अगर आपका लो हो रहा है तो एक मजेदार से ट्रैक को आप सुनाते हैं और आपके मूड को जरा बूस्ट कर देते हैं। तो आई होप सो कि आपका मूड अब अच्छा हो गया होगा। और अगर मूड खराब हो जाता है तो भाई वो क्या ऐसी इंस्टेंट चीजें जो आपके मूड को कर देती है फौरन से बेहतर नहीं बल्कि शानदार, तो इसके बारे में हमें जरूर बताएं। 3636 पर मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कमेंट करें, वहां पे स्टेटस हो चुका है अपडेट। और इसी के साथ साथ चलते हैं हम ब्रेक की जानिब और आते हैं वापस ट्रैक के साथ।
1: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसे घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। न व्हाट्सएप खुद मांगता है, न कोई अदारा और न कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری

फौरन से पेशतर ठीक हो जाता है। तो चाय जो है वो बेसिकली लोगों का लव ऑफ लाइफ है कि उसे पियो और मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा भाई, नजीर खोसो भी हमें मैसेज करते हैं बलूचिस्तान से, और हमेशा ये बड़ी इमोशनल बातें हुए करते हुए नजर आते हैं, तो भाई इनकी बातों को भी हम शामिल करेंगे। लुकपल कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूं मैं। कहती है मूड ठीक होने की वजह शॉपिंग वगैरह करने से ठीक हो जाता है, या कोई अच्छा सा फेवरेट शो या सॉन्ग सुन लूं तो। ओके, सो मेनी थिंग्स भाई, या तो शॉपिंग कर लो तो मूड अच्छा हो जाता है, और शॉपिंग में भी मैं बताऊं, हर दफा मूड अच्छा तब आपका होता है शॉपिंग करने आप जाएं अगर आपको आपकी पसंद की चीज मिल जाए तो मजा आता है कि आप ना बड़े मुतमईन हो जाते हैं जब आपको आपकी पसंद की चीज मिल जाती है। कहती है फिर मैं बेटर फील करने लगती हूं, जबरदस्त हो गया है। कहती है लंच में अंडे आलू हैं, वेरी नाइस। तो एक साथ बहुत सारी चीजों का जवाब दे दिया लोग पढ़ने, लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती क्योंकि हम आपके साथ 2 बजे तक मौजूद हैं, तो अभी बहुत सारी बातों का होना बाकी है मेरे दोस्तों। अच्छा भाई, इसी के साथ साथ हमें नसीर खुसो कहते हैं कि कुछ लोग इसलिए बहुत ज्यादा मेहरबान होते हैं क्योंकि दुनिया ने उनके साथ इतनी सख्ती और बेरहमी की होती है कि वो नहीं चाहते कि कोई और वो वही तकलीफ और दर्द महसूस करे जो उन्होंने किया था। वाह भाई वाह। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, वरना बहुत सारे लोग जो है ना वो इन ये सारी चीजें एक बदले के तौर पर करते हैं कि अगर हमने ऐसा सहा है या हमारे साथ बुरा हुआ है तो हम भी सामने वाले के साथ करेंगे, हद तक कि भाई जो सामने वाला है उसका क्या कसूर है अगर आपने अपनी लाइफ में इन चीजों को बेयर किया है। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानबूझकर इसलिए करते हैं कि नहीं भाई, अगर मैंने तकलीफ सही है, मैंने सख्त रवैया देखा है, तो मैं तुम्हारे साथ भी ये करूंगा। बट दिस इज नॉट द राइट वे। जो उन्होंने लिखा है, जो लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से रखते हैं अपने एम्प्लॉयज को या दीगर जो चीजें होती हैं उस पर, ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपने वो जुल्म और सितम सहा है तो सामने वाला भी वो डिजर्व नहीं करता, उसका क्या कसूर है, उसे क्या पता कि आपने क्या सहा है। सो दैट इज वाई बी काइंड एंड बी कूल। इसी के साथ साथ एक और ट्रैक को भी हम शामिल करते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है। आपका मूड इंस्टेंटली कैसे अच्छा होता है, इस पर हम बात करें। जरी नूर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। कहती है सलाम, कैसी हैं? मेरा मूड भी चाय पर ठीक हो जाता है। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त हो गया है। चाय इज द मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, यानी कि वही इस वक्त विनर चल रहा है कि चाय पीते लोगों का मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन बशर्त ये कि चाय का कप हो भी बड़ा मजे का, तो मूड जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ चलते हैं ट्रैक की जाने, बात है वापस ट्रैक के बाद।

0: on FM 100 Pakistan.
1: हेलो एवरीबॉडी, सो आई एम बैक और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. आज आपके मूड पर बात हो रही है कि जब आपका मूड होता है खराब तो वो कैसे ठीक हो जाता है इंस्टेंटली, यानी कि अचानक से आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है. तो हमें शहजाद खान मैसेज करते हैं, लेकिन शहजाद आपने हमारे पुरानी पोस्ट पर मैसेज किया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने आपका मैसेज तो रिसीव कर लिया है, लेकिन आप इसे हमारे नए स्टेटस पर मैसेज कर सकते हैं. कहते हैं जी सलाम, कैसी हैं आप? वालेकुम असलाम, मैं ठीक हूं. कहते हैं मेरा मूड एक कप चाय से ठीक हो जाता है. ओके, देखा मैंने कहा था ना कि चाय का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार है हम सबकी जिंदगानी में, उसे पीते ही ना हमारा मूड जो है वो

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111-7837
0: and Shaukat Khanum Karachi Ki Takleef. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. This is the Lunchtime Special. Only on FM.

0: ओके इस ट्रैक को आप एंजॉय कर रहे थे प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत भी कायम हो गई है, लंच भी आपसे जान लिया और अब मैसेजेस हमारे पास मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ साथ भाई आज वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो मनाया जाता है, कोकोनट का आलमी दिन आज के दिन मनाया जाता है। दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाने पीने कुकिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बहुत सी दूसरी चीजों में यूज होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोकोनट यानी नारियल के बारे में। कोकोनट को अक्सर ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर हिस्सा डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। कोकोनट वाटर नेशनली अकेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करता है, इसलिए हाइड्रेशन के लिए पॉपुलर है। कोकोनट की आउटर रिस्क इस कॉपर फाइबर बनाया जाता है जो रोप्स और मैट्स और ब्रशेस में यूज किया जाता है। कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम साउथ एशिया और साउथ एशियन कुकिंग में बहुत कॉमन है। कोकोनट बेसिकली नट नहीं ड्रॉप होता है और ये फैक्ट जो है वो इंटरेस्टिंगली आपको सरप्राइजिंग लगेगा क्योंकि कोकोनट के वाकई में इतने सारे फायदे हैं। कोकोनट इज सो यमी और आजकल जो है वो कोकोनट का जरा सीजन भी है तो आपको हर जगह हर जानब कोकोनट के जो है वो ठेले नजर भी आ रहे होंगे। अगर नारियल को पाकिस्तान की किसी एक डिश में ऐड करना हो तो आप किस डिश में ऐड करेंगे? भाई मुझे तो नारियल इतना पसंद है, चाहे वो पिसा हुआ हो, वो साबुत हो और जो स्लाइस में मिलता है, जो ठेलों पर अभी आपको नजर भी आ रहा होगा, दैट इज सो यमी। बल्कि मेरी तो कोशिश और प्रेफरेंस ये होती है कि अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूं तो मैं लाजमी तौर पर जो है वो कोकोनट खाऊं क्योंकि कोकोनट इज सो यमी, बहुत मजे का होता है और ये इतना फायदेमंद होता है जिसका आप ये सोचें कि जिसकी दरख्त को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि कोकोनट से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कुकिंग के पर्पस के लिए भी यूज होता है, वो ब्यूटी के लिए भी यूज होता है, वो बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। तो आज कोकोनट का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आपको कोकोनट कितना पसंद है हमें जरूर बताएं। फिलहाल हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की जानेब और आते हैं वापस ट्रैक के साथ। आपके मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, उसे भी करेंगे हम शामिल।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: This program is brought to you by
3: Step School से Foundation हो Strong. Call now at 03111117837
4: and Shaukat Khanum Karachi ki takleef.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365.
7: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

Okay, so you are enjoying this track and now I am back. और भाई जो मैसेजेस आ चुके हैं उनसे भी शामिल करते हैं कि लंच में क्या है और आपका मूड अच्छा इंस्टेंटली किन चीजों से होता है. तो जरीन नूर कहती हैं कि आज खाने में दाल गोश्त है और आलू गोभी है. वेरी नाइस. आलू गोभी भी मजे की होती है और भाई दाल गोश्त भी. फरहान खान कहते हैं कि आज लंच में हमारे है साबुत मसूर की दाल और भरी हुई मिर्चें. वाओ, भरी हुई मिर्चों की तो मैं कहती हूँ कि क्लास ही अलग है. वो भरी हुई मिर्चें दो तरह की भी होती हैं, मतलब एक बेसन में डिप होती हैं और एक वैसी मिर्चों को भर के हल्का सा चूल्हे पे सॉटे कर लिया जाता है. सो दैट इज तो भाई वेरी वेरी यमी. तो फरहान खान के लंच में भी आज बहुत मजे की चीज है और ये दाल में जो ये वाली मिर्चें होती है ना, ये दाल का मजा दुबाला नहीं तिबाला कर देती है, बड़ा ही मजा आ जाता है. इसी के साथ साथ जरीन नूर कहती हैं कि चाय तो बस चाय है, दिल खुश हो जाता है. मेरा तो अच्छी चाय पीकर सारी परेशानी खत्म हो जाती है. आई लव चाय. ये बात सही है लेकिन चाय शुड बी वेरी वेरी नाइस. मतलब ये तो रूल होना चाहिए कि अच्छी चाय के बगैर चाय इज नॉट एक्सेप्टेबल. बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो चाय में ऐसा होता है कि आप जब चाय का कप देखें ना, बेसिकली चाय को जज करने के लिए अच्छा तरीका उसका कप ही है, क्योंकि उसकी कप उसकी हकीकत बयान कर देती है कि वो एक्चुअली में कैसा नजर आ रहा है. तो अच्छी सी पकी हुई और एक जबरदस्त से रंग की चाय, ना तो ज्यादा सफेद ना तो ज्यादा काली, वो जो दरमियाना रंग है ना, ओहो वो तो मैं कहती हूँ चाय में चार चांद लगा देता है. तो ऐसी ही मजेदार सी चाय हो तो वाकई में परेशानी खत्म हो जाती है. कहते हैं जी थैंक्स फॉर माय खूबसूरत ट्रैक. अभी जब ट्रैक रिक्वेस्ट की मेरा मूड अच्छा था. यस, ट्रैक सुनने को तो मेरा दिल चाह रहा था. यस, ट्रैक के साथ चाय पीने से मूड भी अच्छा बना देता है. बिल्कुल ऐसा ही है भाई कि चाय के साथ आपकी पसंद का ट्रैक चल रहा हो तो मजा ही आ जाता है. वाह भाई, आज तो मुझे लग रहा है कि मेरा शो जो है वो लंच टाइम स्पेशल के बजाय चाय स्पेशल हो गया है. बिकॉज चाय इज द लव ऑफ लाइफ ना, सो दैट इज वाई एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट चाय. और मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले चाय पी है तो ये है कि मेरा भी मूड अच्छा हो गया. मुझे लग रहा है मेरी आवाज भी उससे बेहतर हो गई चाय पीते ही. और कहते हैं कि जी आई लाइक कोकोनट. रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. एंड आई लव कोकोनट. मुझे तो कोकोनट बहुत ही पसंद है और कोकोनट के कितने सारे फायदे हैं उस हवाले से भी हमने आप तक आगाही फराहम की. लुकवर्ल्ड भी कहती है आई लव कोकोनट एंड आई लव इट टू. और भाई कोकोनट की तो क्या ही बात है, फवायद के हवाले से तो हमने आप तक आगाही फराहम करी ही है. उसी के साथ साथ आज कोई और खास दिन मनाया जाता है जिस पर हम गुफ्तगू करें तो नहीं, और कोई इतना खास दिन नहीं है. नेशनल लिव फेयरलेस लाइफ, चलो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, इस पर भी बात करेंगे. लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा है तो ट्रैक शामिल करते हैं और फिर वापस आकर इस पर भी करते हैं बात.

0: आप लोग इंजॉय कर रहे थे इसको, क्यों मेरा दिल हारा, तो क्यों हारा भाई आप लोगों का दिल ये भी हमें जरूर बताएं कि क्यों हारा। खैर जी, बातों का सिलसिला तो जारी है आप लोगों के साथ। हम लोग अपने लिसनर्स से खूब सारी बातें करते हैं और उनसे जरूर हर मौजू या गुफ्तगू पर राय जरूर लेते हैं, तो इससे आता है बड़ा मजा। लुकमल कहती है कि मेरी अम्मी बनाती थी इमली भर के हरी मिर्च, बहुत लजीज बनती थी। यस बिल्कुल सही आप कह रही हैं, ये वाकई में बहुत लजीज बनती होंगी और मिर्चें भरी हुई ना बहुत मजे की लगती हैं उसमें। अब तो खैर बहुत सारी वेरिएशंस आ गई हैं, जैसे चिकन डाल दी, चीज डाल दी, बट आई मस्ट से कि ये वाले जो मजा आता है ना, जैसे कि इमली भरी, मसाला भरी, या एक स्पेशल एक मसाला बनता है जिसमें इफ आई एम नॉट टेलिंग यू द रॉन्ग, तो साबुत धनिया और थोड़ी सी अजवाइन और इमली और थोड़ा सा नमक, इसका एक पेस्ट डनकर भी जो है वो इमली, थोड़ी सी इमली डालकर मिर्चों में डाला जाता है और तला जाता है, तो वो बहुत मजे की लगती हैं। तो मिर्चों की तो मैं कहती हूँ भाई बात ही अलग है, वो बेसन में तली हों या वो ऐसे सोटे की हुई हों, जिस भी हाल में हों, मिर्चें तो भाई मिर्चें हैं। इसे खाकर मजा दुबारा नहीं बल्कि तिबाला हो जाता है। अच्छा जी, जरीनूर कहती हैं कि मैं भी जब बाहर जाती हूँ ना, कोकोनट लेकर खाती हूँ और उसका पानी भी पीती हूँ, बिकॉज कोकोनट इज ऑल्सो लव। भाई कोकोनट तो बहुत मजे का होता है और इसके फवायद तो हैं ही हैं, लेकिन आपको पता है इसे खाने के बाद ना फवायद और इन सबको अगर हम एक साइड में रख दें और एक जनरल बात करें, तो कोकोनट को खाने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, मजा आता है। हालांकि समटाइम्स आपका चबा चबा के मुंह जो है वो दुख जाता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा तादाद में ले लें और अच्छा हो बड़ा हो खाएं और आपके मुंह दुख जरूर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मजा आता है। तो बेसिकली हम ऐसे देखें तो कोकोनट खाने के बाद ना एक सेटिस्फेक्शन भी आपको मिल रही होती है, जिसकी वजह से और मजा आता है कोकोनट खाने में। तो कोकोनट इज वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी। अब बाहर जाएं और कोकोनट अगर आपकी इर्द गिर्द नजर आए तो फ्रेंच फ्राइज छोड़कर कोकोनट जरूर खाएं, क्योंकि इसके बहुत से फवायद हैं और ये फायदेमंद है। सो कोकोनट जरूर खाएं। आज वर्ल्ड जो है वो कोकोनट डे मनाया जा रहा है, सो हमने भी आप तक आगाही फराहम की कि गो एंड ईट कोकोनट। साथ ही साथ ब्रेक की जानिब चलते हैं और आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837
1: and
3: Shaukat Khanum Karachi Ki Takleef.
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: KHI space your text message. Send it to 3636.
1: Genie in radio.

Alrighty, everyone, welcome back. Aap sun rahe hain from 100 Pakistan. And the show is called Genie in our radio. So guys, aap log ko batate chalein ki aap log hamein messages kar sakte hain 3636 per. And tarikekar bahut hi aasan hai, just type KHI then leave space, aapka message, aapka naam, and then aapki request, aur se 3636 per bhejna hai. So aap log ko batate chalein ki agar aap 3636 per message nahi karna chahte hain to aap hame पेज पर मैसेज कर सकते हैं, विच इज facebook.com/arjun.jasmin JAZMINE. वहां पे जाएं और हमें मैसेज करें. सो इसी के साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि 3636 पर भी मैसेज कर सकते हैं. ये रिक्वेस्ट शो है, आप सबको पता है. वेनेसडे थर्सडे हम आप लोगों के साथ होते हैं FM 100 पाकिस्तान पर इस रिक्वेस्ट शो में. सो मीनवाइल हम जाने एक और जबरदस्त ट्रैक की तरफ. दिस इज गोइंग टू बी द सॉन्ग कॉल्ड आहा बाय नाज़ी हसन, ब्यूटीफुल सॉन्ग.

Okay, Janelle, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं 36364 एंड facebook.com/rj.jasmin वहां पे भी आप हमें मैसेज कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर फेवरेट ट्रैक्स. हमारे पास नूर का मैसेज आया है. वालेकुम अस्सलाम. मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ. लास्ट वीक किसी वजह से नहीं आई थी. एक तो शदीद किस्म का फ्लू हुआ हुआ था और जो कि अभी आजकल वायरल बहुत खतरनाक वाला फैला हुआ है. अभी भी मेरा गला जो है वो सही नहीं है. एंड आप लोग भी ख्याल रखें, ज़रूरी है. एंड इसी के साथ साथ जो है नूर ने हमें रिक्वेस्ट किया है पार्स चना. ठीक है, हम जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. जरी नूर ने हमें मैसेज किया है. वालेकुम अस्सलाम. सज्जाद अली का सॉन्ग ने रिक्वेस्ट किया है तुम नाराज हो. ठीक हो गया जरी नूर, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड इसी के साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है एच पे लुक वर्ल्ड का मैसेज है. वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं. डेली क्यों नहीं आती यार, ये तो बस अब मैं ऐसे ही आती हूँ. अच्छा, रहीम शाह का सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है टपका आंसू. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज लुक वर्ल्ड. आपका सॉन्ग हम थोड़ी सी देर में प्ले करेंगे. मीनवाइल कुछ मैसेजेस हम शामिल कर रहे हैं. बुशरा ने मैसेज किया है वालेकुम अस्सलाम. बुशरा कैसी हैं आप. मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. और उन्होंने कहा है आपका मैसेज जो है वो लेट मी सी ना कहो. उन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है फ्यूजन का. ठीक, ओ सॉरी नॉट फ्यूजन, आरओ का उन्होंने रिक्वेस्ट किया है. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. विल डेफिनेटली प्ले योर सॉन्ग. ओके, राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक एंड दिस इज गोइंग टू बी द ट्रैक कॉल्ड एतबार बाय वाइटल साइंस. ये हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी निगत की सबसे पहले. सो निगत, इफ यू आर लिसनिंग दिस ट्रैक इज फॉर यू.

जी जनाब, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड 2:40 हो गए हैं. 4 बजे तक जो है हम आप लोग के साथ मौजूद हैं, विच मीन्स कि आप लोग पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं और 3636 पर भी मैसेज कर सकते हैं. facebook.com/rz.jasmine JZMINE, इस पर भी आप इनबॉक्स में जाके हमें मैसेज कर सकते हैं. Then you can request for your favorite tracks. So, जनाब, 2nd of September हो गई है and almost 3 महीने रह गए हैं इस साल को भी खत्म होने में. September start हो गया है and we have October, November, December. These 3 months are left. So, आप लोग हमें आज message करके बता सकते हैं कि साल जो है वो खत्म होने वाला है. जो आपने साल के शुरू में सोचा था, चाहे वो आपका कोई ऐसा कोई काम हो या कुछ भी हो, वो अभी किस हद तक कंप्लीट हुआ है, हुआ है नहीं हुआ है, लेट अस नो 1-3636. या अभी हो रहा है, आपका काम चल रहा है, आपका जो ड्रीम था जो आपने साल के शुरू में सोचा था, साल ऐसे करेंगे, ये चीजें लेकर चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. सो लेट अस नो ऑन 3636 एंड facebook.com/rz.jasmine. बता सकते हैं आप हमें इनबॉक्स करके कि आपका काम पूरा हुआ या नहीं हुआ. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय सजाद अली. जरीन नूर की रिक्वेस्ट है, तुम नाराज हो, सो दिस ट्रैक इज फॉर यू. जरीन नूर की रिक्वेस्ट है.

0: Smooth music. Smooth music. Non-stop. Non-stop.
1: 24 hours.
2: 100. This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
4: And
5: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takneef.
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365. Some are born to lead. Welcome to FM 100.
10: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ Jasmine.
11: It's the soundtrack of your life. It's FM 100.

सो गाइस, 3 बजने में जो है वो 10 मिनट रह गए हैं एंड आप लोग को बताते चलें कि हमारे पास पेज पे भी काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। शाहिद ने हमें मैसेज किया, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं शाहिद। एंड समी शेख ने हमें मैसेज किया है, समी शेख थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, लिखा है आपको जल्दी सेहत याब करें, अमीन अमीन सुमा अमीन यार। अच्छा, मैं आपका सॉन्ग देख लेती हूँ यार। इंग्लिश हम वैसे ज्यादातर प्ले करते नहीं हैं, अगर कोई पाकिस्तानी बताना तो वो बताओ। आई नो टेक्निकल टीम जो है वो काम कर रही है, इंशाल्लाह जल्दी बेटर हो जाएगी ट्रांसमिशन।

0: Music is on.
1: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: And
4: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takneef.
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365.
7: Let's celebrate
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
10: Genie in radio.

Alrighty, Janelle, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3664 एंड facebook.com/rz.jasmine JZMINE इस पर भी आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं. ओके, समी शेख ने मैसेज किया है और उन्होंने कहा है अपनी पसंद का कोई सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा. चलें ठीक है, डन हो गया, जरूर प्ले कर देंगे. अच्छा जी, उन्होंने कहा इस साल मैंने सोचा है कि मैं शादी कर लूंगा. चलें, गुड है भाई, बेस्ट ऑफ लक. ओके, सो आप लोग मैसेजेस करके हमें बता रहे हैं ये साल आपने क्या सोचा था जो कंप्लीट करना है और वो हुआ या नहीं हुआ. आप 3636 पर मैसेज कर सकते हैं या facebook.com/rz.jasmine JZMINE इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ जैस्मिन अंडरस्कोर अहमद JZMINE अंडरस्कोर AHMED इन कैपिटल लेटर्स. सो मीनवाइल हम जा रहे हैं अभी एक और सॉन्ग की तरफ. द ट्रैक इज गोइंग टू बी ना कहो बाय आरो, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. मिलते हैं इस गाने के बाद.

Okay, Janelle, welcome back. आप सुन रहे हैं हमारा शो जिसका नाम है जेनीनो रेडियो. एंड गाइस, इट्स 18 मिनट्स पास 3 ऑन द डायल राइट नाउ, व्हिच मींस कि 4 बजे तक हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं. आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर. एंड हमारे पास आयशा का मैसेज आया. वालेकुम अस्सलाम आयशा, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं. ओके, आफरीन रिक्वेस्ट किया है राहत फतेह अली खान का, ठीक है हम जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: KHI space your text message. Send it to 3636.
2: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

Alrighty everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आज हम बात कर रहे हैं अबाउट के इस साल जो आपने चीजें सोची हुई थी वो कहाँ तक पूरी हुई हैं, फुलफिल हुई नहीं हुई, बता सकते हैं मैसेज करके ऑन 3636 एंड facebook.com/rj.jasmine jzmine इस पे भी बता सकते हैं. और हमारे पास आमिर का मैसेज आया है. आमिर शेख का वालेकुम अस्सलाम पेज पे इन्होंने मैसेज किया है. अच्छा, इन्होंने कहा है इस साल गाड़ी लेने का सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ले ली है एंड उसको बिजनेस पे भी लगा दिया है. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, रायमा ने हमें पेज पर मैसेज किया था और उन्होंने कहा है सुरूर प्ले कर दीजिएगा बिलाल सईद का. चलें ठीक है, हम कर देते हैं अभी प्ले. सो रायमा, इफ यू आर लिसनिंग, दिस ट्रैक इज फॉर यू. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा. द ट्रैक इज सुरूर बाय बिलाल सईद.

0: This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: And
2: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/fm247365
6: FM 247365

0: FM 100 Traffic Update.
1: पाकिस्तान एफ एम 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूँ फरुख हजार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। पय्यूमाबाद चरंगी से वो तमाम ट्रैफिक जो बलोच कॉलोनी ब्रिज की जानिब आ रहा है उसके दरमियानी रास्ते पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, गाड़ियाँ स्लो मूव कर रही है, लिहाजा वो तमाम लोग जो रास्ते पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफ एम 100 पाकिस्तान।
0: This traffic update was brought to you by FM 100.

0: dedication for maximum music. FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा.
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Vahan HBL.
1: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet taja.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: Come on.
1: दुनिया से बेखबर जो कहना था कहने दे आंसू ये बहने दे यार बोले दे खबर बोल खोल दे हम जान भी दे देंगे तेरे कहने पे वक्त पूरा ना हो बेसबर मेरे लफ्ज़ तुझ पे

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
3: Shaukat Khanam, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
6: किसने कहा था पैसे

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: And Sir Sabs Nitro Falls ko laga aur jeet ta ja.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM 247365.
4: FM 100.
5: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
6: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
7: पाकिस्तान 85 टाइम.

This is FM 100.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: खत्म नबूवत हर मुसलमान के ईमान का जुज है, लिहाजा इस मामले को सियासी अगराज के लिए इस्तेमाल करने और जज्बात को भड़काकर अफरा तफरी पैदा करने से गुरेज करें। ये पैगाम मुफादियामा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Some are born to lead. Welcome to FM 100.
4: FM 100's time check. It's 7 p.m.
5: This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, वहाँ HBL
6: एंड सरसब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें।

0: डिजिटली या विजिट करें अपने करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
3: शौकत खानम कराची की तकदीर।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपने करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL।
5: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL।

0: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे। होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
5: You're listening to the greatest radio station in

0: SBL फ्रीडम ग्रांट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: किसने कहा था पैसा?

0: Touch that dial.
1: Stay tuned to FM 100.
2: FM 100's time check. It's 8 p.m.
3: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
0: इवनिंग ड्राइव टाइम.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
4: facebook.com/fm247365 fm247365.
1: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic qawaneen aur isharon ki pabandi kijiye, inki khilaf warzi qabil-e-girft jurm hai. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye,

0: radio, as you know it, is extinct. This is a new species of music station. The evolution has begun. This is the all-new
1: FM
0: 100. Why change and buy into technology?
2: There's only one station in Maine blazing today's hottest music.
3: The hottest music.
4: You're listening to.
3: This station is
1: the
3: bomb.
1: FM 100.
5: FM 100's time check. It's 9 p.m.
6: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: स्वागत खानम कराची की तकलीफ।
8: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।

0: This program is brought to you by
1: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
1: Like us on facebook.com/FM247365.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi ki Takmeer.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
6: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है, तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतल्लिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रुजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है, तो कानूनी वारिस मुतल्लिका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपके शनाख्ती तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
7: FM 24/7/365

ना सही प्यार नल ना सही उसे नल वेख लिया कर। Legend.

0: जो तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझमें क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। हर मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और या तुम अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।
1: This program is brought to you by
2: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
3: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 247365

0: This program is brought to you by
1: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
2: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के निमान है। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतर इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एल वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में

0: एप्लीकेशन पर। मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथ, आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 247365

Tiger. Alright, my good friend. Pakistan, Assalamu alaikum, mere behno, bhaiyo, dosto, sajno. This is your good friend, Muhammad Ali Sheikh, speaking to you directly from FM1 Studios Network. Because I travel. And all that. The program is to have fun and feel relaxed. Today's आज होते हैं आज जैसा कि आज इज नॉट इंटेंडेड टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स लिविंग और डेड आई डिजायर टू बी सैटायरिकल ह्यूमरस एंड फनी थिंक ऑफ मी एज अ लिटिल लिविंग ब्रीदिंग कार्टून नन ऑफ द वर्ड्स स्पोकन इन दिस शो आर टू बी टेकन टू सीरियसली टू बी ट्रू एंड यू मस्ट हैव फेथ इन जर्ड इन द शो फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग एंड रिस्पेक्टेबल सोर्स टू बी ट्रू The writers anchored the show plead insanity such buzz cannot be held responsible. If some words are just too spicy or hurting to you, you may not listen to the show if your sentiments are hurt easily or if you are below the age of one. Henceforth, parental guidance is strongly advised. So, without much ado, hum karte hain is show ko shuru is gaane ke saath. Oh.

गाने पे गाना, गाने पे गाना, ऐसा नहीं गाने का गाना, फिर कुछ उसके बारे में कुछ बोलना, फिर कुछ समझना, फिर कोई मैसेज को पढ़ना और उसके बाद गाने को चलाना। अच्छा, ये एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है सत्तार भाई को, जो हमारे सुपरवाइज कर रहे हैं शो को, एंड सुपरवाइजिंग इंजीनियर है, हमारे साउंड इंजीनियर है, और उनको बड़ा पसंद है। इसी तरह काफी दोस्त हैं, इनको बहुत पसंद है, गजल है, कवाली है, कुछ है। ये उस्ताद रजा अली खान साद सुल्तान ने इन बॉक्स होकर गाया है, मैं मोहम्मद।

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 fm247365 This is your

ये सी दिलों में उन जमाने में नई शादी हुई थी हमारी। इसी बारे में एक शादीशुदा कभी अपनी कविता में लिखता है कि मांग भर की सजा, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मैं मांग पूरी करते करते मांग खर खा रहा।

0: कुछ म्यूजिक ऐसे हैं
1: जो
0: भूले नहीं जाते स्पेशली दिए सॉन्ग जो मैं आपको सुना रहा हूँ. नजर नजर तेरी जलवे जुबां जुबां जुबां जुबा जुबा तेरी भाई.

Flash FM 24/7 365. FM 24/7 365. This is your

0: your location for maximum music.
1: Of course, ladies and gentlemen, बात यह है कि साथ साथ बातचीत भी तो होनी चाहिए, मगर मेरी आदत है, अगर बड़ी बुरी मेरी एक आदत है कि अगर अगर तो मैं जिद नहीं छोड़ता, अगर मैं फैसला कर लूं तो जिद नहीं छोड़ता, और जिसका पीछा करता हूं उसको दिन में तारे दिखाता हूं। शुरू से आदत है, क्या कर सकते हैं। अब तुम अपना मुस्तकबिल तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हो, और तुम्हारी आदतें तुम्हारा मुस्तकबिल बदल देंगी। और हर किसी को बहुत जल्द अपना न समझ लिया करो भाई साहब, हर किसी को बहुत जल्द आंखें बंद करके एतमाद न कर लिया करो। यकीन मानो, दुनिया बड़ी अजीब है, लोग दिल और एतमाद बहुत जल्द तोड़ देते हैं। दलेरी का ताल्लुक नस्ल से है, नस्ल क्योंकि हम मुसलमानों में ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसमें दलेरी है, उनके नस्ल में है दलेरी। और दूसरे तलवे चाटने से जिगर मजबूत नहीं होते भाई साहब, और हाल हाल पूछने से दिल ठीक नहीं हो जाता। अगर हो सके तो कभी कभार लोगों का दिल रख लिया करो, उनकी नापसंदीदा बातें बर्दाश्त कर लिया करें, एक गुस्से को उनके गुस्से को अपने मिजाज को इग्नोर कर दिया करें। ये खुदा लोग हमेशा नहीं रहते, अगर अचानक मर जाते हैं, ये आजकल हो रहा है। फिर भी अपना ख्याल रखा करें, कहते हैं कि ताल्लुकात निभाने के लिए सिर्फ वादों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो एहसास की, चाहे तो वो ताल्लुक दोस्ती का हो या मोहब्बत का।

0: FM 100's time check. It's 12 midnight.
1: This is your music. This is your

0: for maximum music.
1: कहते ना कि अगर अगर अगर बात सही है तो खुद बहुत सच्चाई सामने आ जाएगा. साबित क्या करना है, इससे क्या साबित करना है, लेकिन इस अमल में आप बहुत लोगों को गलत साबित कर चुके होते हैं. अगर हमारा अखलाक सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों के लिए या चंद बड़े लोगों के लिए अच्छा है तो हम खुश अखलाक नहीं बल्कि हम मौका परस्त और मुनाफिक हैं. अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हैं, और अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप एक अजीम इंसान हैं. जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ हमें बोले बिना ही हमारी बात को समझ जाती थी, और हम अब अक्सर कहते हैं माँ जी आप नहीं समझेंगे. कितनी पागलपने की बात है, बेहूदा बात है.

0: to FM 100.
1: शहर शहर कहता है अरे आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करने वाला हूँ। शहर कहती अरे बीवी सच में क्या करोगी? शहर आज मैं तुम्हारी तारीफ करूँगा। बीवी कहती पहले तो बताओ तुमने गलती क्या की है? बीवी कहती शहर अरे कोई गलती नहीं हुई यार। बीवी कहती नहीं नहीं नहीं नहीं बिना वजह तारीफ ये तो कुछ शक की बात है। शोर कर अरे मैं सच बोल रहा हूँ यार तुम बहुत अच्छी हो। बीवी कहती अच्छा और शोर कह तुम घर बहुत अच्छे से संभालती हो। बीवी और शोहर तुम्हारे हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है और बस आखिरी वाली बात सारी तारीफ को खराब कर देती है। अरे अरे अरे अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है तुम्हारी सबसे अच्छी आदत क्या है पता है? शोर कह रहे क्या क्या मेरी अच्छी आदत? तुम हर बार अपनी गलती खुद बता देते हो। शोर कहता है अरे मैंने कौन सी गलती बताई जनाब? बीवी गुस्सा प्यारा है गुस्सा प्यारा है बोलकर शहर मतलब तारीफ करने आया था और फंस गया। बीवी कहती है शादीशुदा जिंदगी में यही तो बात है। शहर कहता है अरे अब तो मैं चुप ही रहूंगा। बीवी कहती है ये पहली पहली पहली बार है कि तुमने ऐसा कहा है। जनाब ये सॉन्ग है आबरू ये असल में ओएसटी है नबील शौकत अली एंड सना जुल्फिकार इन्होंने मिलकर खूब गाया है।

0: location for maximum music.
1: बस गेस्ट बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। सैम हमारी एक गेस्ट बहुत जबरदस्त उसने परफॉर्म किया गाया उनका उज़्मा हफीज अपना तैयार किया हुआ सॉन्ग जो खुद ही उन्होंने कंपोज किया खुद ही लिखा खुद ही गाया वो आपके सामने पेश करता हूँ।

महफिल गर्म करने की बात थी ना, इसलिए फास्ट सॉन्ग ज्यादा चलाएंगे, ज्यादा इंग्लिश ये फॉर्मुलेशन आती रहती है। फेसबुक पर चूंकि मैंने पुट ऑन फेसबुक माई फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जर्मनी Can I touch your heart? Touch it deep inside. Touch you there. Touch it deep within. Oh. It's the loneliness. That's the killer. You know what I'm gonna do? I'm gonna play one more song of Uzma Hafiz. She's a new one, and a real good new one. Never let go till we're gone. This is her genre.

0: This is your music.
1: जाने कैसी बांधी तूने पक्कियों के दो मन में रखे चा चलाया.
2: अभी आप सुन रहे थे हुज़मा हफीज़ को जो उस्ताद के साथ जिनकी जगह मैंने गाया था उस दफा.
1: कुछ है आपसे तेरी नाम नजरों ने तेरी छुआ.
2: उम्मीद है आपको ये गाने पसंद आ रहे होंगे. कोशिश होती है कि हमेशा नए काम करो, नए गाने सुना.

0: your location for maximum music.
1: ठीक है, हम भी इसी राह पे चल रहे हैं. दिल जो है ओएसटी, जान अली खान.

0: your location for maximum music.
1: सुन लिया आपने बात. आइटम नंबर नहीं करेंगी तब. और ये सॉन्ग लगाने के बाद मैं आप सब लोगों से खुदा हाफिजी करूंगा और शब खैर कहूंगा. और ये सॉन्ग है आज भी. ये आगा अली कलाकार हैं. सेशन सीजन नंबर वन है इनका. ये कुछ खास किस्म का सॉन्ग है. इसमें अल्फाज वर्डिंग सुने, इसके अंदर म्यूजिकल अरेंजमेंट है वो उसको सुने और लफ्जों की किस तरह डिवीजन की है वो सुने. मैंने पहले कहा कि मैं इसके साथ ही आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा और खुदा हाफिज़. शब खैर.
2: दिल लेके अपना बस यूं ही

वेलकम बैक कहेंगे सुनो तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। ब्यूटीफुल ट्रैक है सज्जाद अली के ट्रैक को, ये ट्रिब्यूट पेश किया गया, उनको कवर किया, तो म्यूजिक जरा अच्छा सा था। मैं क्या सुना दूं तुहानू, हैं जी ते हैं जी। अच्छा भाई फीदा सबसे पहले काट दिया हमारे यूसुफ भाई ने पापोश से, और तमाम सुनने वालों को एफएम की तमाम फैमिली को सलाम कहा है, खुसूसी तौर पर हमारी आंटी चाची अरूसा गुलबानो, तमाम डॉक्टर्स इमरान भाई खिताब को, लाला गुफरान भाई और मेरे वालिद मोहतरम को बहुत बहुत शुक्रिया। अमीन भाई भी आ गए हैं जल्दी जल्दी, सलाम के बाद कह रहे हैं भाईजन शो सुपर बिंदास बोले तो झकास। एफएम की तमाम स्वीट फैमिली को उन्होंने सलाम कहा है, और अनीस भाई को, अयुब लाला को, यूसुफ भाई और तमाम जितने भी जेंटलमैन हैं सबको एक ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा है, बिल्कुल करेंगे, यानी कि समझ आए ना आप। इसके साथ ही जनाब अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, उनका मैसेज आज हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं भाई, ते हैं भाई। कह रहे वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, सजाद अली या मेहंदी हसन की आवाज में कोई सॉन्ग सुनवा दी, बड़ी मेहरबानी होगी। अयूब आफरीदी, समी शेख, नसीम कुरैशी, खिताब उल्लाला, इमरान रियाज और आपके वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में सलाम पेश किया है उन्होंने। हर लम्हा दुआ गो नेक ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जही साहब, FB एरिया कराची। तो सुनो ये तो वो मैसेजेस के जो है मैं आपके साथ ही साथ पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा, सवाल भी पूछ लेंगे यार, कोई मसला नहीं है। हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ फैसलाबाद से कह रही है सलाम वालेकुम नदीम भाई, खैरियत है, तबीयत ठीक है, मिजाज शरीफ सेट वेट है, ओके टेक, ढेरों सलामती की दुआएं। आप जैसी बहनों की दुआएं होंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे, हैं जी ते हैं जी। वैसे आप ये बताइए कि वहां के मिजाज शरीफ कैसे हैं शहरों के, सुनने में आया है कि बड़ी बारिशें हो रही हैं भाई, रावलपिंडी का तो सबको ही पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं, धमाकेदार किस्म की बारिश हुई। तो जो रावलपिंडी में सुन रहे हैं वो बताएं कि वहां के हालात कैसे हैं, इस्लामाबाद के हालात कैसे हैं, और क्या फैसलाबाद में बारिश हुई है या नहीं हुई। इस्लामाबाद वाले हमारे हैं हमीद गुल साहब, वो अगर आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। इसी बात पर आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही धमाकेदार किस्म के ट्रैक की जाने बारी, ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे हमारी प्यारी सी बहन रूसा को, जो कि पता नहीं सुनती है या नहीं सुनती, लेकिन मेरी ये बहन को बहुत ट्रैक पसंद था, और उसके साथ साथ हमारी खामोश लिसनर प्यारी सी बहन नसरीन पटेल एल

0: वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको. मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर और सलीम अहमद साहब आ गए हैं और कह रहे हैं दुनिया में सबसे लंबी जुबान जराफे की होती है. बाकी जो जो शादीशुदा हजरात के जहन में आ रहा है वो भी ठीक है. जुबान ही तो है सलीम भाई जो अर्श पर भी पहुंचा देती है और फर्श पर भी.
1: हैं जी जी हैं जी.
0: और फैसलाबाद में तो मौसम गर्म है, बारिश के आसार तो अभी तक नजर नहीं आ रहे. और तमाम प्यारे प्यारे लिसनर्स को भी सलाम और ढेरों दुआएं दी हैं हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने. वैसे पंजाब में मौसम ज्यादातर गर्म चल रहा है. समी शेख साहब आ गए, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? सलाम टू ऑल लिसनर्स. कोई अच्छा सा शादी वाला सॉन्ग डेडिकेट कर दें नदीम भाई. दिन खराब, दिन करीब आ रहे हैं आपके भाई के. कौन से दिन करीब आ रहे हैं ये भी बता दो. भूल गए तो सो जाऊंगा शादी के. अच्छा शादी के दिन करीब आ रहे हैं, हमें पता है. अच्छा भूल गए तो सो जाऊंगे. और अगर मैंने शादी का गाना फौरन चला दिया तो क्या करोगे? फुल टाइम परफॉर्म करोगे, डांस वांस करोगे, ये बताओ. यानी कि समझ रहे हैं ना आप. हमारे शहजादे साहबजादा साहब आ गए हैं और कह रहे हैं नदीम भाई ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में क्या फर्क है? ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में ये फर्क है कि जर्मनी में डच बोली जाती है और ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश बोली जाती है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश. और ऑस्ट्रेलियन डॉलर अलग है और जबकि जर्मनी में जो है यूरो चलता है. और भी कुछ बताऊं आपको? वैसे आप सवाल बहुत पूछते हैं. मैंने गलत तो नहीं बताया, जरा मैंने दास देना. वैसे आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि इनमें क्या फर्क जो मैं समझ रहा हूं ये कुछ और है? मैंने दसो. अच्छा जी, एक सवाल भी फेंक देते हैं, जवाब दिल चाहे तो दे दीजिएगा. जो ना नॉलेज का सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जहां हर शहरी को फौजी ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है हर शहरी को नेसेसरी. वैसे आपको एक बात बताऊं, किसी जमाने में ऐसा पाकिस्तान में भी होता था फौजी ट्रेनिंग. एनसीसी का आपने नाम सुना होगा, हो सकता है कि जेनजीस को ना पता हो लेकिन जो मिलीनियर्स हैं उनको ये पता होगा और जेनेक्स को पता है ये कि एनसीसी जब आप स्कूल से कॉलेज जाते थे तो कॉलेज में एक पीरियड होता था एनसीसी का जिसमें आपको फौजी ट्रेनिंग दी जाती थी. लेकिन अब ये सिलसिलाकार पता नहीं है या नहीं है. जो कॉलेज गोइंग लड़के और लड़कियां हैं, अच्छा लड़कियों को भी एनसीसी ट्रेनिंग दी जाती थी, तो अब ये नहीं पता कि आजकल के दौर में ये सिलसिला हो रहा है. आई डोंट थिंक सो कि हो रहा है, कहीं से खबर कानों में आई नहीं है. तो ये भी एक सवाल, जो यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज गोइंग हैं इस वक्त अगर मुझे सुन रहे हो तो प्लीज कंफर्म कि एनसीसी उनके कॉलेज में हो रही. और सवाल ये था कि वो कौन सा मुल्क है जहां पर हर शहरी को फौजी ट्रेनिंग या कि आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, ये आपने मुझे बताना है. ये सवाल मैंने फेंक दिया है. आज दिल कर रहा है आपको नदीम साहब कहूं. हाय अल्लाह जी, कह दो. शादी से पहले सोचा था जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा. जिंदगी ने ऐसी बैंड बजाई है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं. कमर दर्द की गोली खाऊं या सर दर्द की? समी भाई आप भी शादी करने से पहले एक बार सोच लेना. सलीम मेमन कह रहे हैं अरे ये सोचेगा नहीं, ये गोलियां खरीद लेगा पहले से. यानी कि समझ रहे हैं ना. अच्छा भाई, हमारे प्यारे से नवीद साहब, जो छोटे भाई नवीद साहब, वो भी इस वक्त शायद सुन रहे हो. तो नवीद भाई अगर सुन रहे हैं तो बेल मार दो ताकि आपके और शकील भाई का गाना जो है वो चला दूं. हालांकि फुल टाइम मूड नहीं हो रहा क्योंकि गाना जो है ना वो बहुत थोड़ा सा स्लो टाइप का है. स्लो गाना है, बहुत अच्छा भाई, जबरदस्त जिसकी फरमाइश की है उन्होंने. तो जब तक आप बेल नहीं मारोगे नवीद भाई, छोटे भाई, तब तक मैं वो गाना नहीं चलाऊंगा. क्योंकि आपने कहा था कि मैं चला जाऊंगा नदीम भाई, तो अगर आप जा चुके हैं तो फिर गाना चलाने का फायदा ही नहीं है. यानी कि समझ रहे ना आप, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया। ओके तो सलाम, कैसे हैं वालिद साहब? ये साहबजादा का मैंने मैसेज पढ़ा था, जो कि मैं ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी समझता था, वो ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं। अब ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या फर्क है ये पहले आप बताएं। अरे भाई बेल मार दी ये माइक, इसका मतलब है नवीद छोटे भाई शकील साहब के साथ सुन रहे। तो भाई शकील भाई को डेडिकेट कर रहे हैं ये ट्रैक जो आ रहा है आपकी समातों तक। एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो। और बहुत ही स्लो सा गाना हमने चलाया जो कि अभी नहीं चलाना चाहिए था मगर चला दिया। गाना अच्छा था असल में। गाना गाया हुआ है अब्दुल हन्नान और समर जाफरी ने। नया गाना है मतलब जरा पुराना नहीं है मगर ओके ठीक है, आपको पसंद आया होगा। तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा दोबारा से मैं आप लोगों को वार्म अप करता हूं। और सनी शेख जिसकी शादी होने वाली है उसने बोला कि एक शादी वाला गाना हो जाए तो थोड़े वास्ते शादी वाला गाना हेलो भड़ो। क्या बात है भाई, बहुत हो जाए कुछ सनी साहब।

वेलकम बैक एंड आई होप कि आप लोग भरपूर तरीके से वार्म अप हो चुके होंगे। सवाल एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, सवाल ये मैंने किया है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ के हर शहरी को फौजी ट्रेनिंग दी जाती है, और एनसीसी किस किस ने किया हुआ है पाकिस्तान में। जो सुन रहे हैं उनसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ, एम ही कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया जिनका मैसेज था नदीम भाई, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में क्या फर्क है, किस लिहाज से दोनों अलग अलग मुल्क हैं और क्या है। वैसे अगर आप जुग्राफियाई तौर पर पूछना चाहें तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो है ये दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, और दोनों की जुबान ऑस्ट्रिया में भी जो है वो डच बोली जाती है, जर्मनी की लैंग्वेज बोली जाती है, दोनों मुल्कों में सेम लैंग्वेज बोली जाती है। बाकी ये कि जर्मनी बड़ा मुल्क है, ऑस्ट्रिया छोटा मुल्क है। और कुछ पूछना चाहें तो वो भी बता दूंगा। तालीम के हवाले से अक्सर जो है आजकल पाकिस्तान में, मैं आपको ये बताऊं कि ज्यादातर नौजवान जो है वो उनकी कोशिश ये होती है कि जर्मनी में कहीं आसानी, थोड़ा सा दूसरे मुल्कों की बनिस्बत थोड़ा आसानी के साथ वहां जर्मनी में एक्सेस है वहां पर पढ़ने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट वीजा पर बहुत से जो है नौजवान जो है वो वहां पर जा चुके हैं जर्मनी में। ऑस्ट्रिया में भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रिया में नहीं जाते हैं। और बस ये कि ऑस्ट्रिया और उसमें ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि तकरीबन 85-86 मिलियन की आबादी है जर्मनी की, और ऑस्ट्रिया की आबादी अप्रोक्सीमेटली जो है 8-9 मिलियन के करीब है। तो आप ये भी देख लें कि कितना फर्क है आबादी के लिहाज से भी, तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी का कोई मुकाबला नहीं है। और एक और बात बता दूं आपको कि जर्मनी जो है वो यूरोप के स्ट्रांगेस्ट कंट्रीज में आता है, ये भी जहन में रखिएगा अगर नहीं पता तो। और इस तरह तो होता है, इस तरह के काम है। और क्या पूछना है भाई, मेरा दिमाग जब चलना शुरू होता फिर चलता रहता है। मैं जर्मनी के बारे में और भी बहुत कुछ बता देता हूं। और जनाब मैसेजेस की जानिब चलते हैं, एंड ये ऑस्ट्रिया वाला इनका मैसेज हो गया। हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर भी आ गई, करिए सलाम। कैसे हैं वालिद साहब को, संजू को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, और संजू के लिए बहुत सारी दुआएं। आज सारा दिन संजू से बात नहीं हुई है, याद आ रही है संजू की। जरीन नूर हमें भी आ रही है क्योंकि अभी तक संजू गायब है, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बस हम दोनों एक काम करते हैं, एक गाना चलाते हैं संजू के लिए और संजू भागती हुई आ जाएगी। हैं जी ते हैं जी। अमीन कह रहे हैं, अच्छा भाई एक और गाने की फरमाइश कर दी है। अमीन भाई क्या हो गया है, एक गाना कह दिया बस वही चलेगा। और कह रहे हैं कि अगर ये गाना हो जाएगा तो अयूब लाला और शेख साहब बहुत खुश हो जाएंगे। थैंक यू भाई, शेख साहब को हम खुश कर देंगे गाना चला के अयूब लाला के लिए, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और पहले मैं ये देखूं कि इन्होंने नाम लिखा या नहीं लिखा। अच्छा इन्होंने नाम नहीं लिखा, इसलिए आपका नाम नहीं, आपका मैसेज नहीं पढ़ूंगा मैं भाई। बहुत प्यारा मैसेज है, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं, नो डाउट, थैंक यू वेरी मच आपकी मोहब्बतों का। लेकिन आपने क्योंकि अस्सलामु अलैकुम के बाद जो है टच मोबाइल के हवाले से, मैं इस वजह से ये टच मोबाइल का जिक्र कर रहा हूँ कि इनके मैसेज में ये है, तो उनको पता चल जाए कि मेरा मैसेज नदीम भाई ने क्यों नहीं पढ़ा। तो आपका मैसेज ना पढ़ने की वजह जो है वो ये है कि आपने नाम नहीं लिखा, अपना नाम जरूर लिखे। ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक टाइम में एक ही मुल्क थे, और ऑस्ट्रो जर्मनी कहलाते थे, बोथ आर जर्मन पॉपुलेटेड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, बिल्कुल सही कहा आपने, अलग है। आयरिश आबादी माइग्रेटेड है, आयरिश आबादी माइग्रेटेड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको जो बात बताऊंगा। अच्छा अब आपने ये जो बात की है ऑस्ट्रिया और जर्मनी के हवाले से, ये भी बिल्कुल हकीकत है, आपने सही फरमाया। लेकिन मैंने आजकल के दौर के हिसाब से जो बातें बताई हैं, उम्मीद करता हूं कि उससे भी आप मुत्तफिक होंगे। और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये कॉन्टिनेंट है, नो डाउट कॉन्टिनेंट है, अलग है, और आयरिश आबादी माइग्रेटेड है, नहीं ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप तारीख पढ़ें तो किसी दौर में आपने सुना होगा कि काला पानी की सजा होती थी,
अब वो काले पानी की सजा बेसिकली होती क्या थी कि दुनिया से उसको काट देना, जिसको कहते ना कि कता ताल्लुक हो जाना दुनिया से, ऐसी सजा दी जाती थी कि जहां पर आपका कोई एक्सेस पूरी दुनिया के साथ ना हो। तो ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के वजूद आने से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं कि यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में स्पेशली जो जिनको सजाए मौत या काले पानी की सजा दी जाती थी, तो उनको जो है ना हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है ऑस्ट्रेलिया में इस कॉन्टिनेंट में लाकर और फेंक दिया जाता था। और जितने भी क्रिमिनल्स थे, हाई प्रोफाइल्ड क्रिमिनल्स की मैं आपको बात बता रहा हूं, तो ये इन सबको जो है यूरोप और अमेरिका में, और अमेरिका में ज्यादा, वहां से ज्यादा तादाद आती थी, तो ये इन लोगों को लाकर जो है ना ये सजा होती थी कि छोड़ दिया जाता था। और वो उस जंगल में, मतलब उस कॉन्टिनेंट में, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं बना था, वो वहां पर जो है वो फिर अपना गुजर बसर करते थे खुद ही, मतलब दरख्तों से फल तोड़ लिए, खेत उगा लिए, फिर इस तरीके से उसमें आहिस्ता आहिस्ता आबादी होना शुरू हुई और ये फिर आगे बढ़ा और माइग्रेटेड टू, माइग्रेट इसमें जो है माइग्रेशन का सिलसिला बाद का है, बहुत बाद का है, ठीक है। और आपके इन दो मैसेजेस की वजह से कुछ जो है वो जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो है मेरा ख्याल है हमारे लिसनर्स तक पहुंची, इस वजह से मैंने इस पर थोड़ी सी चर्चा कर दी। सुनियो, हमने भी अभी आपको घंटी मारी है कोई एक धमाकेदार सॉन्ग मेरे और हुज़ैफ़ा के लिए, अगर हो जाए तो क्या बात है, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। अब भाई डोंट वरी, डोंट वरी, मैसेजेस आपके और आ रहे हैं, मगर हम आपको लेकर जाएंगे एक बहुत प्यारे से गाने की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे जनाब अमीन की जानिब से सबको। उन्होंने कहा था आतिफ असलम का अगर सॉन्ग हो जाए, तो अमीन भाई एलो फड़ो गाना भी आतिफ असलम का नया वाला।

वेलकम बैक आएंगे सुनो सुन सजना ब्यूटीफुल ट्रैक है और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अच्छा भाई, हमारे तमाम लिसनर्स को आप लोगों को ये बात बता दूं कि मेरी प्यारी सी राज दुलारी सी चाची जो है, चाची इज बैक, लेकिन कंडीशन वैसी नहीं है और चाची ने मुझे बड़ा इमोशनल कर दिया। अभी चाची से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी और इमोशनल ये कर दिया कि हमारे चाचा जो है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए, एक उनका जुमला ऐसा खतरनाक जुमला है, यकीन माने कि दिल चीर देने वाला, कि चाचा कब वापस आएंगे। मतलब ये इतना दिल हिला देने वाला जुमला है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और खैर, हमारे बहुत सारे लिसनर्स को तो उनके चाचा के बारे में तो पता ही था, लेकिन बहुत से लिसनर्स को नहीं पता कि मैं ये समझता हूं कि मैंने भी अपनी लाइफ में जो पुरनूर चेहरे वाली शख्सियात देखी है, उनमें एक चाचा भी थे। और मतलब उनकी शक्ल देखते ही ऐसा लगता था कि उनकी शफकत जो है वो हमारी तरफ आ रही है, शफकत आ रही है हमारी तरफ, चेहरे से ही ऐसा लगता था। हालांकि अगर वो कुछ ना भी बोलें तो ऐसा लगता था। खैर जी, चाची हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। और चाची ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब भी दे दिया है मैंने जो आज सवाल किया आपसे, कि आप ये बताइए कि वो कौन सा मुल्क है जहां पर हर शहरी को फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। और मेरी प्यारी सी चाची हमेशा की तरह, ये इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है चाची को, तो चाची ने उसका जवाब भी दुरुस्त दे दिया। और मैं चाहूंगा चाची कि आप जो है ना गाहे बगाए शोज सुनती रहें, जरूरी नहीं है मेरा शो सुनती रहें, अयाज हो, शुभी भाई हो, और किसी चैनल पर सुन रही हूं, तो उसमें यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्यारी सी चाची जिंदगी में लौट आए। और ये जिंदगी के साथ सिलसिलाकार चलता है कि आज जो हमारे साथ हैं वो कल हमारे साथ नहीं होते, तो बस यही सिलसिला है। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को सब्र अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और हम FM 100 की पूरी फैमिली आपके साथ हैं, वी लव यू। अच्छा जनाब, आगे और बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब। सलीम अहमद का मैसेज हो गया था और हुजैफा, हाँ हुजैफा साहब और सलीम मेमन को गाना डेडिकेट करना है, ये मैंने लास्ट मैसेज पढ़ा था। एंड अब आगे बढ़ते हैं जनाब। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं भाई आप? हाँ नाम लिखा हुआ है भाई। लाला को, संजीदा आपी को, मोश को, मगरूर को और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है हमारी प्यारी सी बहन सबा गुल ने। एंड साहबजादा ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया भाई, क्या बात है साहबजादा साहब, हमारी चाची के पास साहबजादा सही है। अच्छा, मैंने जो बातें की हैं साहबजादा रिलेटेड टू ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया वो गलत तो नहीं की हुई? अभी दस दो मनो पता चले, मुझे अभी और पढ़ना पड़ेगा। और जनाब नौरीन बहना क्या कह रही हैं? कह रही है कि मैं भी कॉलेज में NCC में थी नदीम भाई। ओहो क्या बात है, दुनिया में। अच्छा, इन्होंने नाम बता दिया है मुल्क का। और मेरी बहना आपने नाम तो बता दिया मगर ये दुरुस्त नहीं, एक दिन आप समझ जाएंगे कि बात करने की बजाय खामोश रहना, करीब आने की बजाय फासला रखना, इंतजार करने की बजाय भूल जाना आपको कई तरह की तकलीफ से बचा लेता है। क्योंकि नदीम भाई मैं ठीक कह रही हूं ना, फैक्ट है ये। अच्छा, ये बातें कितनी जबरदस्त सी हैं कि बात करने की बजाय खामोश रहना, करीब जाने की बजाय थोड़ा सा फासला रखना, और बहुत इंतजार की बजाय भूल जाना इंसान को कई तकलीफों से बचा लेता है। मगर इस मकाम पर पहुंचने के लिए, कि जब आप इस मकाम पर पहुंच जाएं कि आप फासला भी रखना शुरू कर दें, इंतजार करने की बजाय भूल भी जाएं और बात करने की बजाय खामोश भी हो जाएं, तो इंतहाई तकलीफ दे तजर्बात से गुजरना पड़ता है पहले। उससे मतलब जब तक इंसान को एक्सपीरियंस नहीं हो जाता ना, और ये उम्र के एक हिस्से पे जाके आता है। अगर आप ये कहें कि नौजवानी में कोई शख्स इन चीजों पर अबूर हासिल कर लेगा तो मुमकिन नहीं है, मेरे ख्याल में हो भी सकता है, मतलब 100 में से कोई परसेंटेज 2-4% जो है माइट बी पॉसिबल, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन मैं एक माशरती तौर पर बात कर रहा हूं
कि जवानी में आपको ज्यादातर ऐसी पेशेंस नजर नहीं आएंगी, ये जाहिर है एज के साथ साथ जिंदगी के तल्ख तजर्बों तज्जियों के साथ साथ ये चीजें नौरीन बहना समझ में आती हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है। और एक गाने की फरमाइश कर दी है, रूहे जां को डेडिकेट कीजिएगा। रूहे जां आपकी कहां गायब है। और चाची जान को सलाम और ढेरों दुआएं चाची, अब आप वापस आ जाएं अपनी फैमिली में एफएम 100 में। ये कह रही है नौरीन तौसीफ। और उसके साथ साथ तमाम प्यारे प्यारे लिसनर्स को भी सलाम कहा है। आज का शो भी यकीनन बहुत जबरदस्त होगा। रूहे जान को सलाम भी कहा है उन्होंने। और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, हैं जी ते हैं जी। आपकी रूहे जान, अदीला की रूहे मन और हमारी भी रूहे मन को हम अभी गाना डेडिकेट करेंगे, बल्कि करेंगे नहीं, उनको कर देते हैं ट्रैक डेडिकेट। तो ये ट्रैक जनाब जरीन नूर की जानिब से, ये सब अलग अलग करना चाहते हैं, जरीन नूर की जानिब से जनाब, अकेली मेरी बहन जो है ना, ये कहती है मुझे मेरी अकेले का नाम लेना है, तो ये उनकी जानिब से हम डेडिकेट करते हैं उनकी संजू को और हमारी रोहमन को।

वेलकम बैक कहेंगे सुने आप सबको। आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानेब जानेब। देख रहा हूं कि लास्ट मैसेज कौन सा था, स्क्रॉलिंग हो रही है जनाब, स्क्रॉलिंग। अच्छा जी नदीम भाई, अगर हो सके तो लला और मानूर के लिए एक गाना चला दे यार, संदारा। अच्छा अब ये गाने चला देंगे हम, फरमाइश पूरी नहीं होगी, डेडिकेट कर देंगे हम। सबा गुल हमारी बहन ने ये मैसेज किया है और सुनो, हो सकता है कल मैं मनोरा जाऊं हाय और आमिर सही का मलूम करूं। बिल्कुल मालूम कीजिएगा सलीम अहमद साहब, हमारा पैगाम दीजिएगा साईं को कि साईं कहाँ और साईं माना चाहता है। और नदीम भाई डू नॉट माइंड, डच हॉलैंड की जुबान है, जर्मन अलग है, डच बैंक। ये मैं भी आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल में तो डच है लेकिन आपने कहा है तो इसके ऊपर यानी कि समझ आए ना। अच्छा जी जैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, चाची को मेरा सलाम कहिएगा। बिल्कुल कहेंगे। अजरा शब्बीर हमारी प्यारी सी लिसनर हैं और चाची की बहुत प्यारी सी दोस्त हैं, चाची उनको सलाम कह रहे हैं। और अजरा शब्बीर को हम गाना अपनी जानिब से डेडिकेट करेंगे क्योंकि हमारी प्यारी सी चाची अभी थोड़ा सा यानी कि समझ आए ना। और जरीन नूर बहनों ने कहा है थैंक यू सॉन्ग के लिए। और एक और मैसेज आया है बगैर नाम के तो हम वो भी नहीं पढ़ेंगे। हैं जी ते हैं जी दास खाना आइयो बाप, प्रदीप भाई आ गया और कहते जाने जगर ये हबीबी आपको सबा गुल को मानूर को मोश को हिना गुल को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है। और उन्होंने कहा है कि भाई एक अदद प्यारा सा ट्रैक जो है वो आप इन सबको डेडिकेट कर दें, क्योंकि ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे आप तो जीबीएन बहुत खुश होगी। बिल्कुल करेंगे जनाब, नेक्स्ट ट्रैक उनको डेडिकेट करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। हैं जी जी हैं जी। बिल्कुल सही कहा जनाब, हमारी नौरीन बहना ने दुरुस्त जवाब दे दिया है। और एनसीसी जब आप करती थी तो कैसा लगता था ये बताइएगा। अच्छा बहुत सारे नौजवान जो हैं उस दौर में एनसीसी, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है जब मैं कॉलेज में था, तो उस दौर में बहुत सारे लड़के भाग जाते थे एनसीसी से, बहुत टफ किस्म की जॉब होती थी भाई ये। अच्छा भाई हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जी साहब ने शुक्रिया अदा किया है कि हमने उनका मैसेज पढ़ा है। जनाब शुक्रिया की कोई बात नहीं है, हमारा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अयुब लाला कहते हैं कि सिस्टर संजू को और सिस्टर नौरीन को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चले इसी बात पर हम एक अदद ट्रैक की जानिब जाते हैं जो कि हम अयूब आफरीदी की जानिब से डेडिकेट करेंगे। सबा गुल को मुश को मानूर को हिना गुल को। और ये गाना जब डेडिकेट करेंगे तो जीवीएन बहुत खुश होगी। तो गाना जरा नया सा है, जरा सुनिए आप कैसा लगेगा आपको, सब बताइएगा जो पश्तो समझते हैं।

Welcome back. भाई क्या बात है, टप्पे थे और इनका एक अपना स्टाइल है टप्पों का, जबरदस्त. पंजाबी टप्पे अलग होते हैं, पख्तू टप्पे अलग होते हैं और बहुत जबरदस्त होते हैं. ये क्या बात है, हमारे प्यारे से अयूब लाला ने जो है थैंक्स कब भी कहा है. अरे थैंक्स की क्या बात है, सुने हो? हैं जी, जी हैं जी. अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम अयूब भाई, जीते रहे, खुश आबाद रहे. ये कह रही है नौरीन बहना और कह रही है कि बहुत टफ ट्रेनिंग होती थी एनसीसी की, बहुत शौक भी था आर्मी जाने का, गन चलाना भी सीखी, बहुत इंजॉय भी किया. अच्छा वैसे इस हवाले से अब मैं एक थोड़ी सी चर्चा कर लूं, फिर आपके मैसेजेस की जाने दबाया जाए, समझ रहे ना. एनसीसी की ट्रेनिंग जब होती थी तो कॉलेज में नेसेसरी होता था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एनसीसी को जरूर ज्वाइन करेंगे, और ज्यादातर जो है नौजवान वो एनसीसी को ज्वाइन करते थे और उसकी ट्रेनिंग, ये आर्मी फौजी ट्रेनिंग जो है ये सिलसिला होता था. अब ये मैंने अभी अपने तमाम, वैसे तो मेरा अपना जो ख्याल है कि बच्चों को अब एनसीसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कॉलेजेस में, मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूं. तो इसी वजह से मैं जितने भी नौजवान बच्चे जो इस वक्त कॉलेजेस में जा रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या एनसीसी करवाई जाती है कॉलेजेस में या नहीं, इसके फायदे और नुकसान क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा. यानी कि समझ रहे हैं ना आप, समझते रहे भाई. लवली ब्रदर जो भी कह रहे हैं वो अपना नाम लिखें, उनका मैसेज कोई नहीं पढ़ेंगे हम. सलीम मोमन कह रहे हैं आज हमको जल्दी सोना है क्योंकि ख्वाब में किसी को देखना है, इसीलिए हमारा सॉन्ग जल्दी चलाने. जनाब चलाते हैं आपके लिए गाना, बस एक दो मैसेजेस हो जाएं तो फिर आपके लिए गाना चला देते हैं. या अच्छा इन्होंने गाना कहा था, कोई मेरा ख्याल है कोई फरमाइश की थी. अच्छा धमाकेदार किस्म का सॉन्ग उन्होंने बोला था कि मेरे और हुज़ैफ़ा के लिए हो जाए, तो धमाकेदार किस्म का गाना हम निकाल लेते हैं. तो जनाब ये अभी धमाकेदार किस्म का ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं सलीम अहमद साहब को और हुज़ैफ़ा को, और इसमें हम सलाम भी कर रहे हैं आपको. एलो फड़ो.

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुनो। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक, और तीन बजे तक ये अलग अलग जारी और सारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। सवाल जो मैंने आज पूछा है, सवाल ये पूछा है जनाब आपसे कि वो कौन सा मुल्क है जहां पर हर शहरी को फौजी ट्रेनिंग दी जाती है, और इस हवाले से मुझे एनसीसी याद आ गया था, और एनसीसी के हवाले से मैंने पूछा, मगर सारे जो है सो रहे हैं भाई। वैसे कराची का मौसम जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला नजरें बच से बचाए, अगस्त से ही बहुत जबरदस्त चल रहा है। मतलब ये है कि रात को सोते हुए पंखा तो चल रहा होता है, मगर उसके साथ चादर ओढ़नी पड़ती है, तो इसका मतलब है कि प्लेजेंट मौसम है। जबकि पंजाब साइड पर काफी गर्मी पड़ रही है, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, तो अभी भी मतलब ये कि बाइक ड्राइव करते हुए भी थोड़ा सा फील होता है यार कि कुछ हल्की फुल्की जो है शर्ट वर्ट पहनी जाए, टी शर्ट में जो है वो हवा जो है ठंडी ठंडी सी लगती है, बड़ा अच्छा ये मौसम जो है। देखिए सर्दी भी आ गई, आने वाली है, आमद आमद है सर्दियों की, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। अच्छा जनाब, हमारे प्यारे से साहबजादा साहब ने कहा था कि डच जो है वो जर्मनी में नहीं बोली जाती, और उसके हवाले से इन्होंने कहा था मुझे, कहां गए तो मेरा दिमाग घूम रहा था यार ये कैसे हो सकता है। हाँ कह रहे थे हॉलैंड में बोली जाती, बिल्कुल दुरुस्त कहा है आपने, असल में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती यू कैन से कि हो गई, क्योंकि जर्मनी में जो मैंने डॉचे डॉचे बोला था ना, तो जर्मनी में जो बोली जाती है जुबान वो कहलाती है, जर्मनी कहलाती है वैसे तो, लेकिन उस जुबान को अगर स्पेसिफिक नाम दें तो वो डॉच डॉच, उसको प्रोनाउंस इस तरह डच डॉट, मतलब डी ओ वाई टी, और वो यू डी यू टी सी एच है, तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि प्रोनाउंस में फर्क आया है, लेकिन जुबान अलग अलग है हॉलैंड की भी और जर्मनी की भी। डॉचे जो है वो जुबान जर्मनी की भी है, तो बहुत हद तक दुरुस्त आपने भी कहा है, और डच जो है डी यू टी सी एच प्रोनाउंस जो है वो मैंने जैसे आपको कहा कि सेम ऑलमोस्ट है, हम क्योंकि एशियंस हैं, हमारा एक्सेंट जो है वो एशियन है, तो इसलिए हम बहुत सारे लफ्जों को मिला देते हैं, यही गलती मुझसे भी हुई। अगर मेरा एक्सेंट जो है वो ब्रिटिश या अमेरिकन होता तो डच और डॉच में आपको फर्क महसूस हो जाता। वैसे डच जो है वो हॉलैंड में भी बोली जाती है, नेदरलैंड में, वैसे अब उसका नाम नेदरलैंड है, हॉलैंड वंस अपॉन अ टाइम था, तो नेदरलैंड में जो है वो डच बोली जाती है, बेल्जियम में बोली जाती है, और साउथ अमेरिका में भी कहीं कहीं बोली जाती है, कैरेबियन में भी बोली जाती है, बहुत खैर इनकी लंबी चौड़ी तफसील है, और आज जो है वो साहबजादा की वजह से काफी जो है जनरल नॉलेज की बातें जो है हमारे सुनने वालों तक पहुंची है। वाकई में सॉन्ग धमाकेदार था, उसके लिए थैंक्स सलीम मेमन साहब, कह रहे भाई हुज़ैफ़ा साहब को बताइए कि पसंद आया नहीं आया, उनकी पसंद बड़ी जरूरी है, एमपीए साहब के साहबजादे हैं, वो एक काम भी पड़ सकता है यानी कि समझ है ना। चले जनाब, आपको एक और ट्रैक की जानिब लेकर जा रहे हैं, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब की जानिब से आप सबको, क्योंकि सज्जाद अली की फरमाइश है। अब जब सज्जाद अली का नाम आता है तो मुझे फौरन हमारी प्यारी सी बहनें जो हैं मेमन कजन्स जो हैं वो याद आ जाती है, इरफान मेमन याद आ जाते हैं, सायरा मेमन याद आ जाती है, तो इन सब के लिए ये ट्रैक है हेलो फड़ो।
1: किड़ किड़ किड़ किड़ कैन

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों आज फिरते हो सर्दियों की शामों में। तो सवाल जनाब जो रिपीट किया है उसका काफी लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया है और कुछ सिलसिलाकार ऐसा है कि अभी तक खामोशी इख्तियार की हुई है। बात हमने की कुछ जर्मनी के हवाले से, कुछ ऑस्ट्रिया के हवाले से, कुछ ऑस्ट्रेलिया के हवाले से और एनसीसी के हवाले से मैंने काफी पूछा है, लेकिन एनसीसी के हवाले से किसी ने कुछ नहीं बताया। क्यों भाई,

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको फिर बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुनियो। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक और ये 3 बजे तक हल्ला गुल्ला जारी है। सारी अब्दुल्ला साहब आ गए हैं, सैयद अब्दुल्ला कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, यू आर सो स्मार्ट, थैंक यू वेरी मच यार, हुस्न नजर है आपकी। और मैं अपने तमाम लिसनर्स को ये भी बता दूं कि जो मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करते हैं तो फौरन से पेशतर वहां पर आ जाएं, क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ी देर के लिए फेसबुक पर लाइव हूं। हैं जी, थे हैं जी। अच्छा अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आज आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, सो स्वीट यार, ये मैं अब सही बता रहा हूँ, ये आपकी हुस्न नजर है, थैंक यू वेरी मच। नदीम भाई आप में बड़ापन है, आप अपनी मिस्टेक मान जाते हो, साहब ज्यादा कह रहे हैं, ये बड़कपन नहीं है यार, ये हकीकत है, होनी चाहिए हर इंसान में होनी चाहिए, क्योंकि ना गलत आप थे ना गलत मैं हूं, क्योंकि डच और डॉचे DYOT मतलब अगर आप इस तरह प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है इंसान से, तो आपने जो नीदरलैंड का बताया बिल्कुल डच जुबान वहां की, और डॉच जुबान जो है जो कि जर्मन जुबान भी कहलाती है वो जर्मनी की है। अब्दुल्ला कह रहे हैं जजाक अल्लाह भाई, सैयद अब्दुल्ला साहब कैसे हैं आप, सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने सवाल किया है। सवाल ये मैंने किया है कि आप ये बताइए कि वो कौन सा मुल्क है जहां पर वहां के तमाम शहरियों को फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। महेश कोचरा भी आ गए हैं, महेश भाई कैसे हैं आप, कह रहे हैं सलाम प्यारा भाई, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी मैं मैरिड हूं, अब्दुल्ला साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे क्यों बता रहे हैं वो खातून बोलती तो चलो मैं समझता भी आप बोले मैरिड अच्छी बात है। हमारी बहन नौरीन तौसीफ कह रही है सलाम वालेकुम नदीम भाई, लाइव में कह रही है अब दोबारा, मैं तो समझा था मेरी बहन आप सो गई हैं, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। हैं जी ते हैं जी। तो जी जनाब महेश भाई जो है सलाम वाला ये, और अब्बास भाई भी आ गए हैं, कह रहे हैं सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल चाल है, सबको दुआओ सलाम। अब्बास भाई बड़ा मिस करते हैं हम आपको यार, कभी कभी 3636 पर भी मैसेज कर दिया करो, आप तो सिर्फ फोन ही करते थे, अब फोन जो है वो बैंड बच चुका है उसका, तो लिहाजा 3636 पर मैसेज तो हो सकते हैं ना, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, या मैसेंजर पर। और क्या आप मैरिड हैं, बिल्कुल भाई शक्ल से लग नहीं रहा, 100% मैरिड हूं। अच्छा आप ये सवाल पूछना चाह रहे थे, चलें ओके। अरे आपका नाम, अच्छा आयशा है, आयशा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, ये कौन से भाई की आईडी है, खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। महेश कह रहे हैं कि चाइना आई गेस, बड़ी लंबी चौड़ी आर्मी है, ऑफ कोर्स होगी यार, दुनिया की दूसरी आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है दुनिया में वो, तो ऐसा तो होता है ना। और नदीम भाई मैं जॉब, मेरी जॉब छूट गई है, अल्लाह हू अकबर, कोई मसला नहीं है यार, और कह रहे हैं कि दुआ कीजिएगा भाई, सबसे गुजारिश है कि हमारे अब्बास भाई के लिए बहुत सारी दुआ करें हैं कि अल्लाह ताला बरसरे रोजगार इनको करे, और इस तरह होता है जितने भी ऐसे बेरोजगार नौजवान जवान हैं उन सबको अल्लाह ताला रोजगार जो है उनका जल्द अज जल्द लग जाए, आमीन सुमा आमीन। और कह रही है नहीं भाई एंड तक आपके साथ हूं, बहुत बहुत शुक्रिया जीती रहे। आयशा कह रही है जी जी जी जी जी जी ओके, कह रही नहीं भाई की नहीं हस्बैंड की आईडी है, ये हुई ना बात आयशा, आयशा अब्दुल्ला सही कहा ना। और मेरा ख्याल है वक्त तेजी से गुजर रहा है तो एक ट्रैक हो जाना चाहिए था,
अच्छा जी, अजरत जी को हमने ट्रैक डेडिकेट कर चुके हैं, अब थोड़ा सा मैं मेलो ट्रैक्स की जानिब आऊंगा और हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ की जानिब से हमारी उनकी रूहे जान और हमारी रूहे मन को डेडिकेट करेंगे ये ट्रैक, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी पसंद आएगा। एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको हैं जी थे हैं जी। तो जनाब बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब और अब्बास भाई आई होप कि ये नौरीन की रूहे जान और हमारी रूहे जान को ट्रैक पसंद आया होगा। नया ट्रैक था मुर्तजा कजलबाश का, गाने के भी बारे में बताना चाहिए ना नहीं। और अब्बास भाई कह रहे हैं कि बस हम तो आपको हमेशा अपने दिल में रखते हैं नदीम भाई और आप भी हमारे दिल में अब्बास भाई। और आयशा ने कहा आतिफ असलम की आवाज अगर शामिल कर ली जाए तो क्या बात है, बिल्कुल चलाएंगे जनाब। और अलीमुद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब भी आ गए हैं, फिर कह रहे हैं वाजिबुल एहतराम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एम तारिक साहब कह रहे हैं आई लव योर एक्टिंग टॉकिंग। मोहम्मद तारिक साहब एक्टिंग चलें बातों को तो आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन एक्टिंग क्या हो रही है। अच्छा मैं बीच में जो ऐसी बातें करता रहता हूँ आवाजें निकालता रहता हूँ, खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और अब मैं सोने जा रही हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। आयशा जी बिल्कुल सोने जाइए, अब आपने गाना नहीं सुनना तो आपकी मर्जी है, हम आपके लिए गाना चलाने के लिए तैयार है आतिफ असलम का, यानी कि समझ रहे हैं ना हैं जी जी हैं जी। तो जनाब अब सिलसिला एक और भी कुछ ऐसा आ गया है कि अक्सर जब मैं कोई सवाल पूछता हूं तो उस सवाल का जवाब मैं जाहिर है ऑलमोस्ट तकरीबन 15 मिनट पहले आप लोगों को बताता हूं, तो लिहाजा मैंने ये थोड़ा सा सिलसिला चेंज किया है ताकि थोड़ी सी जो सवाल किया है उसके बारे में चर्चा भी हल्की फुल्की हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो नौरीन तौसीफ कह रही है शुक्रिया नदीम भाई, अच्छा लगा ना आपको। हाँ सलाम सुनो वेलकम मी योर ओल्ड लिसनर स्मार्ट अमीर खान, वेलकम करेंगे जनाब आपको, यू आर वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम स्मार्ट अमीर, कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं। तो सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि आप ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जहां पर हर शहरी को फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। तो कुछ लोगों ने जो है चाइना भी लिखा, कुछ ने कोरिया लिखा, कुछ ने जापान लिखा। अल्लाह हाफिज कहा है आयशा अब्दुल्ला ने, जीती रहे मुस्कुराती रहे और अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर आपको। फौजी ट्रेनिंग के लिए जो है वो जापान भी कहा गया, लेकिन ज्यादातर हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स ने दुरुस्त जवाब दिया, जिसमें सबसे पहले हमारी प्यारी सी चाची थी और उसके बाद जो है जरीन नूर ने भी दुरुस्त जवाब दिया, हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने भी दुरुस्त जवाब दिया, सबने तकरीबन जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। इसका दुरुस्त जवाब है जनाब इसराइल, हमारा बड़ा दुश्मन मुसलमानों का खसूसी तौर पर। इसराइल जो है वहां पर हर शहरी को जो है फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। और स्मार्ट अमीर कह रहे हैं सुने हो फिट अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ कि कैसे हैं आप। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं आपके सामने हूं। अच्छा वैसे एक हैरत अंगेज बात यह है कि ट्रेनिंग तो दी जाती है मगर अभी हालिया जो जंग सिलसिला कार चला है ईरान और इसराइल के दरमियान में, गो के पहले ईरान और इसराइल की ये जंग चल रही थी और उसके बाद वो अमेरिका ने खामखा अपनी जानिब पलटा ली और ये सिलसिला कार अभी तक चल रहा है। लेकिन जब इसराइल के साथ जो हमले वगैरह हुए थे तो उस वक्त जिस तरह से भगदड़ और डर के मारे जो है बंकर्स में जाकर वो छुप गए थे तो उससे लगता तो नहीं है, खैर हैं जी चाहे हैं जी, लेकिन दी जाती है वहां पर ट्रेनिंग। और इस हवाले से जो है मैंने ये भी कहा था कि एनसीसी हमारे पाकिस्तान में भी ये ट्रेनिंग किसी जमाने में दी जाती थी और खुसूसी तौर पर कॉलेजेस में एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती थी। एनसीसी का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल कैडेट कॉरपोरेशंस। तो ये जो है नेशनल कैडेट कॉरपोरेशन जो है वो हमें फौजी तरबियत देता था और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में मतलब इसके मार्क्स होते थे बाकायदा जो कि एग्जाम में वो शामिल किए जाते थे एनसीसी के। मगर ये चीज खत्म हो गई, क्यों हुई समझ में नहीं आ रहा भाई आप लोगों की, मतलब आजकल के जो जेंजीज हैं उनको तो पता भी नहीं है कि एनसीसी होती क्या है। और इसमें फिजिकल ट्रेनिंग होती थी यार, बच्चे मजबूत भी होते थे,
फौजियों की तरह जो है उनसे वर्जिश करवाई जाती थी, और वेपन्स जो हैं यानी कि गन जो है वो भी चलाना सिखाई जाती थी, और फायरिंग वगैरह, निशाने वगैरह। और इसराइल में तो खैर ये चीज बहुत ज्यादा है। आपको बताऊं कि वहां पर बच्चों को आर्चरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, और वहां के आर्चर्स जो हैं वो बड़े मशहूर हैं। आर्चरिंग से मुराद ये कि तीर कमान जो होता है, तीर कमान चलाने वाला जो खेल है उसको सिखाया जाता है बच्चों को, कि निशाना बच्चे का पुख्ता हो, फोकस जो है बच्चों का वो पुख्ता हो इस बचपन से ही। तो ये चीज जो है, ट्रेनिंग जो है, ये हमारे यहां अलमिया है कि इस तरह का सिलसिलाकार नहीं है। तो जनाब क्यों ना आपको लेके जाया जाए एक और अच्छे से ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करते हैं जनाब आयशा अब्दुल्ला। ये हमारी प्यारी सी बहन अभी शामिल हुई थी, गो के अभी शायद सो गई है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे प्यारे से जो है वो अब्बास भाई और स्मार्ट अमीर जो हैं वो भी आए हुए हैं, उनको भी डेडिकेट करते हैं। आतिफ असलम का ट्रैक है जनाब, उनके नए एल्बम से ट्रैक है, एक पहले आपको सुनाया और एक अभी आप सबको सुनाते हैं, होपफुली आपको पसंद आएगा। एलो फड़ो

वेलकम बैक है ये जनाब और आतिफ असलम का ट्रैक आपने सुना और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा भाई हमारे स्मार्ट अमीर साहब कह रहे हैं सॉन्ग थैंक यू फॉर द सॉन्ग डेडिकेशन। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। और कुछ देर पहले मैं कुछ बातें कर रहा था, हमने फेसबुक के जो इस वक्त व्यूवर्स हैं तो उसमें अप्रिशिएट भी किया है हमारे प्यारे से स्मार्ट अमीर ने। तो इस तरह तो होता है जनाब इस तरह के कामों में। सवाल का जवाब भी मैं दे चुका हूं और आप लोगों के मैसेजेस भी साथ ही साथ बढ़े जा रहे हैं। सबा गुल कह रही है सॉरी नदीम भाई मुझे पता नहीं था कि आज फरमाइश नहीं है। अरे नहीं मेरी बहना फरमाइश है। किसने कहा आपको फरमाइश नहीं है? हम आपकी जानिब से ट्रैक डेडिकेट करेंगे। अभी मैं बस ये कह रहा था कि आपकी डेडिकेशन कर देंगे पश्तो गाने की, जैसे कि मैंने अभी की थी उसमें आपका नाम भी लिया था। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी जानिब से भी एक ट्रैक डेडिकेट हो जाए तो जरूर करेंगे। अच्छा आज मेरा कुछ फरंगी गाने सुनने का बड़ा दिल कर रहा है। आप लोगों की फरमाइशें अब क्योंकि पूरी हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, तो मैं आपको कुछ फरंगी गाने सुनाता हूं, यानी कि इंग्लिश गाने। एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, मतलब बल्कि जितने भी ट्रैक्स चलेंगे वो मेरे फेवरेट ट्रैक्स हैं। और ये ट्रैक जो है मैं डेडिकेट करना चाहूंगा, और यू आर द रीजन ये इस ट्रैक का टाइटल है कि वजह तुम हो, मतलब उर्दू में इसका तर्जुमा है। और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। जो इंग्लिश सॉन्ग लवर्स हैं स्पेशली मैं उन सबको ये अपनी जानिब से डेडिकेट करूंगा। एलो पढ़ो

Welcome back. I'm climb every mountain. Beautiful track and I hope you like it. खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. स्मार्ट अमीर कह रहे हैं जी कि नाइस सॉन्ग था. वक्त बड़ा तेजी से गुजर रहा है और बस समझ लीजिए कि चंद मिनट रह गए हैं. तो हमारी प्यारी सी बहना सवा गुल जो है, उन्होंने कहा था कि नदीम भैयों, एक ट्रैक जो है अगर हो सके तो लाला को डेडिकेट कर दीजिएगा. तो उनकी जानिब से हम गाना तो डेडिकेट करेंगे, मगर उसके लिए हमें गाना ढूंढना पड़ेगा. एक गाना है वो भी बड़ा मेलो सा है पश्तो का, अगर वो मेरा को मिल गया तो यार जरूर चलाए. वो एक था ना, पता नहीं का तोड़ मोड़ के बात करने वाली, लेकिन ये गाना बहुत तवील गाना है. लेकिन हम आपको वही गाना सुनाएंगे, चाहे वो थोड़ा सा सुनाए. तो जनाब, एक ट्रैक की जानिब जाते हैं और ये हम ट्रैक जो है सबा गुल की जानिब से अय्यूब आफरीदी लाला को डेडिकेट करेंगे.

वेलकम बैक है, ये सुन रहे हो आप सबको शिशण मशर दे उबूके, और इसके लिए थैंक्स भी कर दिया है प्यारी जी बहन सभा गुल के गाने चलाने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद तारिक साहब कह रहे हैं ईरान में भी तमाम शहरियों को इस हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है। मोहम्मद तारिक साहब, खैर मेरे इल्म में ये बात नहीं है, लेकिन मैं जो बात अपने तमाम लिसनर्स को बताता हूँ उसकी बिल्कुल तस्दीक करके बताता हूँ। तो आप कह रहे हैं हो सकता हो ये, इसकी मैं तस्दीक करने के बाद ही अपने तमाम लिसनर्स को बताऊंगा कि हाँ ईरान में भी ऐसा होता है, लेकिन कम अज कम इसराइल का तो सबको पता है। और वंस अपॉन अ टाइम, अगर आज से 10 20 25 साल पहले चले जाए, जब पाकिस्तान में जो है कैडेट की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी कॉलेजेस में, तो उस वक्त पाकिस्तान भी ये कह सकता था कि हमारा बच्चे को जो ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन इसराइल में जो है ख्वातीन को और जितने भी शहरी हैं, वन टू ऑल, उन पर ये लाजिम है कि वो फौजी ट्रेनिंग जरूर लें। खैर जी, अब वक्त हो गया है अलविदा का, आपसे इजाजत चाहने का। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी कल स्लीपलेस नाइट में, रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते एक बहुत खूबसूरत सा ट्रैक आप सबकी समातों की नजर। अल्लाह हाफिज़।